0: 6 वाजत आहे. ऐकूया हिंदी बातम्या.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं. उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी.
2: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है. एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है. 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशन की पार्टनरशिप रहा है.
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे. प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे. श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी भेंट करेंगे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे. इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगे. इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे.

0: भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमार स्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोते हो 100.5 मेगाहर्ट्स वर आम्ही आकाशवाणीच्या धुळे केंद्राहून बोलत आहोत। सकाळचे 6:05 झालीत। प्रसारित करीत आहोत अर्चना हा भक्ती संगीताचा कार्यक्रम।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान रक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
6: स्लोवाकिया की

0: राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में $1 अरब से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर $1.80 अरब तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
2: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
0: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 25,00,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूं।
3: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
2: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं, बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुई। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमेरिकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज की अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमेरिका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये

0: जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

हेलीकॉप्टर लीला फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। पालोमी की आवाज में स्वानंद किरकिरे के बोल थे, विशाल मिश्रा का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गाने और कुछ जानकारियां भी देते हैं। दोस्तों, आपने एक खबर सुनी ही होगी कि देश के पहले शूटिंग सुपरस्टार, दिग्गज शूटर और कोच जसपाल राणा ने पिछले दिनों इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने 1994 से लेकर 2000 तक राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में 13 स्वर्ण पदक सहित 23 पदक जीते थे। उत्तराखंड के टिहरी के चिलामो गांव में जन्मे यशपाल ने 12 बरस की अवस्था में ही पहला राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन महज 49 साल की उम्र में ही इस दुनिया से वे चले गए। वे एक सवाल छोड़ गए कि आखिर क्या वजह है कि युवाओं के दिल इतने कमज़ोर हो रहे हैं। क्या 49 साल उम्र होती है इस दुनिया से विदा होने की? अब तो लोगों की उम्र लंबी हो रही है। सवाल यह है कि युवाओं को दिल की बीमारी इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? क्या उनके खान पान में गड़बड़ी है? क्या उनके कामकाज का तरीका सही नहीं है? क्या वे ज़रूरत से ज़्यादा तनाव ले रहे हैं? क्या वे तकनीक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं? क्या उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है? आइए आज इन सवालों के हम जवाब खोजें और ध्यान रखें युवाओं के स्वास्थ्य का। आपके घर में जो बच्चे हैं, युवा हैं, देखें कि उनका खान पान कैसा है, उनके डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कहीं फास्ट फूड का प्रयोग ज़्यादा तो नहीं कर रहे। सुनते हैं ये गाना, फिल्म हक, आकाश ओझा की आवाज है, कौशल किशोर के बोल हैं, विशाल मिश्रा का संगीत है।

0: हक फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आकाश ओझा की आवाज़ में कौशल किशोर के बोल थे, विशाल मिश्रा का संगीत था। और इससे पहले हमने जो गाना सुनवाया था वो था हेलीकॉप्टर लीला फिल्म का, पालोमी की आवाज़ थी, स्वानंद किरकिरे के बोल थे, अमित त्रिवेदी का संगीत था। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की

0: सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

लापता लेडीज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। श्रेया घोषाल की आवाज में स्वानंद किरकिरे के बोल थे, राम संपत का संगीत था। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

पेश प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अपने जमाने के सुप्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई पर।

वसंत देसाई का जन्म महाराष्ट्र के जिला सावंतवाड़ी के गांव सोनावड़े में 1912 में हुआ। उनका बचपन सिंधुदुर्ग जिले के कस्बा कुडाल में बीता, जो कि महाराष्ट्र के कोंकण का जाना माना प्रदेश है। यहाँ वो अपने मामा के पास पढ़ाई लिखाई के हेतु भेजे गए थे। महाराष्ट्र के

इस कोंकण प्रदेश में दशावतारी नाटकों का चलन प्राचीन काल से ही है। इसका प्रभाव वसंत देसाई के बाल मानस पर पड़ना लाजमी था। अनेक नाटकों में वे बतौर अभिनेता और गायक भाग लेने लगे थे। 1929 में अगली पढ़ाई के लिए वे कोल्हापुर पहुंचे। वहां पर इनका परिचय हुआ मराठी और हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ फिल्मकार चित्रपति शांताराम राजाराम वनकुदुरे, जी हाँ वी शांताराम जी से, जो प्रभात फिल्म कंपनी के सह संस्थापक थे।

वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी में काम करने लगे थे। ये बात सन 1930 के आसपास की है, जब वसंत देसाई ने फिल्म खूनी खंजर में अदाकारी भी की थी। ये एक मूक फिल्म थी दोस्तों। वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी की ही जगह में रहा करते। दिन भर काम करने के बाद रात्रि विश्राम से पहले वो श्रम परिहार हेतु हारमोनियम बजाया करते। एक बार वी शांताराम जी के कानों पर जब ये आवाज पड़ी तो वो चकित हुए और फिर उन्होंने संगीत विभाग में बतौर असिस्टेंट के रूप में वसंत देसाई को भेज दिया। महान संगीतकार गोविंद राव टेंबे के संगीत निर्देशन में प्रभात फिल्म कंपनी ने जो पहली बोलती फिल्म बनाई अयोध्या राजा, उसके वो सहायक संगीत निर्देशक थे। ये फिल्म हिंदी में अयोध्या का राजा नाम से बनी थी। जैसा कि वी शांताराम जी हमेशा किया करते थे, जो भी फिल्म मराठी में बनाते उसका हिंदी संस्करण भी हुआ करता। इस दौर के दिग्गज संगीतकार केशवराव भोले और मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर, इनके भी वसंत देसाई सहायक रहे थे। वी शांताराम की बतौर निर्देशक जो पहली फिल्म थी उसका नाम था पड़ोसी, और मराठी में जो शेजारी नाम से बनी थी, इसके संगीतकार थे मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर। आगे बढ़ते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म के इस प्यारे से गाने के साथ।

वसंत देसाई 1936 के आसपास मुंबई आ गए थे। यहाँ उन्होंने आंध्रयन जिशाड़ा, जो कि एसबी वर्तक लिखित नाटक था, इसका संगीत दिया था। एक और मराठी नाटक छाया को भी उन्होंने संगीत दिया था। वसंत देसाई को बतौर संगीतकार हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक मिला जेबीएच वाडिया की फिल्म शोभा में, साल था 1942। उन्हें सही मायनों में ख्याति प्राप्त हुई इसी साल यानी 1942 में आई फिल्म शकुंतला से। हुआ यूं कि वी शांताराम ने अक्टूबर 1942 में अपनी एक अलग फिल्म कंपनी बनाई, राज कमल स्टूडियोज। इसके बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म थी शकुंतला। शकुंतला का मुख्य किरदार किया था वी शांताराम की पत्नी जयश्री ने। चंद्रमोहन थे दुष्यंत और स्वयं वी शांताराम जी ने प्रियम वध की भूमिका निभाई थी। कुल 13 गाने थे इस फिल्म में और एक गाना फिल्म के संगीतकार वसंत देसाई ने भी गाया था। फिल्म काफी चली और वसंत देसाई को भी ख्याति प्राप्त हुई। वसंत देसाई का संगीत शास्त्रीय रागों की गरिमा लिए होता था और सहज मधुरता का रसीलापन लिए होता था। दोस्तों, वसंत देसाई मर्मज्ञ संगीतकार थे। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि कमर्शियल फिल्मों में उन्हें सफलता नहीं मिली। वो व्यावहारिक दुनिया से अनभिज्ञ थे, उनकी बारीकियों को वो नहीं समझते थे, इसलिए दुनियावी बातों की तरफ उनका ध्यान कम था। संगीत की बारीकियों की ओर उनका ध्यान मगर बहुत लगा हुआ होता था। उनकी नजर पैनी थी संगीत की तरफ। हीरे को जैसे जौहरी ही पहचानता है, वरिष्ठ संगीतकार अनिल विश्वास को इस हीरे की पहचान थी। विविध भारती के संगीत सरिता में जब वे पधारे थे तो आपको भी जरूर याद होगा, वसंत देसाई की सांगीतिक बुद्धि की सराहना करते हुए उन्होंने बताया था कि आशीर्वाद फिल्म का ये जो गाना है जो लता जी ने गाया था, कैसे उन्होंने शुद्ध निषाद पर समाप्त किया था। आइए सुनते हैं इसी गाने को।

वसंत देसाई का हर गाना अपनी मिसाल आप है। 1950 में आई फिल्म दहेज का ये गाना सुनिए। जयश्री ने ये गाना गाया था, जो कानों में शहद घोलता है।

दोस्तों, वसंत देसाई ने मराठी फिल्मों का भी संगीत निर्देशन किया है। कुल 20 फिल्में उन्होंने की हैं। हर फिल्म का संगीत सुमधुर बन पड़ा है।

उनकी कुछ बहुचर्चित मराठी फिल्में हैं श्यामची आई, मोलकरण, स्वयंवर झाले सीतेचे, लक्ष्मण रेखा, तूच माझी राणी, कांचन गंगा, छोटा जवान, और इसके अलावा संगीत नाटकों को भी उन्होंने संगीत दिया है। आंधळ्यांची शाळा, छाया और देव दीनाघरी धावला।

0: वसंत देसाई अत्युच्च कोटि के संगीतकार थे। पौराणिक और पारंपरिक फिल्मों का उनका संगीत अमर है।
1: सनन, सनन, सनन।

दोस्तों, किसी संगीत की महफिल में संगीत अपने परमोच्च आनंद लहरों से सबको मुग्ध कर रहा हो और अचानक सितार का तार टूट जाए या बिजली गुल हो जाए। ऐसा ही एक दिन अकस्मात वसंत देसाई के जीवन में आया और उनकी धड़कन का साज थम गया। दिन था 22 दिसंबर सन 1975। वसंत देसाई का संगीत अमर है, जिसके ध्वनि प्रकाश में जीवन के लंबे घने अंधेरे रास्ते भी उजाले से भरे हुए साफ दिखाई देंगे।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने संगीतकार वसंत देसाई पर। शोध स्वर और आलेख अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारे लाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक क्यों कहा।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप हैं विविध भारती के संग, आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम की आज की जो इबारत है वो है, कितना अच्छा हो कि आ जाए रिमझिम फुहार, बारिश सिर्फ मौसम नहीं बूंदों का है त्योहार, बादल की डोली पर आती है बरखा रानी, मन झूम उठता है जब बरसता है पानी, तपती धरती कर रही शिद्दत से इंतजार, कब छाएंगे मेघा कब होगी बूंदों की बौछार, इस बार सावन ऐसा आए घटाओं के संग खुशियां लाए।

चलो बारिश का त्योहार मनाएं, हम सब मिलकर बारिश के गाने गाएं। आसमां अब के धरती पे लिख दे हरी कहानी, झूम के छाए घटा और टूट के बरसे पानी। अब समझ गए होंगे कि इतने सारे शब्द हैं जिनके जरिए हम गानों की डोर को तान सकते हैं। अब आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि कौन कौन से शब्दों पर आज गाने हो सकते हैं, पर यह तो तय है कि आज बारिश के इंतजार की बात है और इतने सारे शब्द जिन पर बहुत सारे गाने हो सकते हैं। सबसे पहले वो बात जो हमारी और आपकी, हम सब की बात है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पहला गाना जो है वो गाइड फिल्म से आ रहा है। गाइड फिल्म किसके उपन्यास पर बनी थी, एक तो ये बात, दूसरी देवानंद और वहीदा रहमान के किरदारों के नाम क्या थे इस फिल्म में।

जरा सोचिए कि बिल्कुल जरा सा 2 मिनट का ये गाना है, लेकिन ये गाना बारिश के लिए हम सबकी पुकार को एक तरह से आवाज देता है। और बहुत सारे श्रोताओं के आज की इबारत को लेकर कमेंट्स आए हैं, और इसके अलावा हमारे सवालों को लेकर भी बहुत सारे लोगों के जवाब आ रहे हैं, और ये सारी बातें करेंगे। लेकिन आपने जैसे गाइड फिल्म का गाना सुना, लमेग थे, इसी तरह का एक और गाना था, आपको बताना है फिल्म का नाम।

पलकों की छांव में फिल्म का ये गाना था और बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं। गुलजार साहब ने लिखा, पलकों की छांव में फिल्म का ये गाना है और इसके अलावा गाइड उपन्यास के लेखककार के नारायण थे और राजू और रोजी नाम थे गाइड फिल्म के हीरो और हीरोइन के नाम। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। 1977 में आई थी पलकों की छांव में फिल्म और 1958 में आर के नारायणन का द गाइड आया था। और ये तमाम बातें हमारे श्रोताओं की। और इसके अलावा बारिश का जो इंतज़ार है वो आप सभी को है, हम सभी को है, क्योंकि जिस तरह की गर्मी इस साल पड़ी है वो बहुत ही खौफनाक है। क्या आपने अपने पूरे जीवन में इस तरह की तेज़ गर्मियां इससे पहले देखी थी? और पिछले साल या बीते सालों की गर्मियों में और इस साल की गर्मी में क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है, ये भी बताइएगा कि इस साल की गर्मी के कहर ने क्या कुछ दिखाया है आपको। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि बहुत बरसों बाद एसडी बर्मन वाला ये गाना हमें सुनने को मिला है। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है, आई बहार, आई बरखा बहार, करे अंगना फुहार। और इसके अलावा और भी बहुत सारे बारिश के गाने इन्होंने लिख दिए हैं, बहुत सारे बारिश के गाने। आज वर्षा की बूंदें पूरे विविध भारती को तरबतर करने वाली हैं, कम से कम गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी भले बारिश के गानों के जरिए ही क्यों ना हो। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि सचिन देव बर्मन धोती कुर्ता पहनते थे और कितने आगे का संगीत देकर वो चले गए हैं कि आज के संगीतकार भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा और भी श्रोता हैं जिन्होंने अलग अलग शब्दों के जरिए अंदाज़ा लगाया है कि आज कौन कौन से गाने हो सकते हैं। जिंदगी की पहली बारिश बहुत सारी यादें लेकर आती है। बारिश की बूंदें गिरते ही इंसान अनजाने में अपने अतीत में लौट जाता है। मिट्टी की पहली सोंधी खुशबू सीधे हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से को सक्रिय करती है जो यादों को वापस लेकर आता है। ये एक श्रोता का कमेंट है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि आज की जो इबारत है उसमें रिमझिम और ठंडक है और बस यूं लग रहा है कि अभी बारिश हो जाए। एक और श्रोता कह रहे हैं कि पूरे राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, दो दिन से अलग अलग स्थानों पर कहीं कहीं बारिश हो रही है और मौसम सुहावना हो रहा है। एक और श्रोता का कहना है कि हम सब पर्यावरण को भूल रहे हैं, एल नीनो की वजह से अकाल जैसी परिस्थितियां हो रही हैं। तो और भी श्रोताओं के कमेंट्स हम शामिल करेंगे, लेकिन अभी आज के दूसरे गाने की तरफ बढ़ते हैं और वो गाना जो है वो आप सभी के दिल के करीब गाना है। आपको फिल्म का नाम बताना है और उसके अलावा ये भी बताना है कि इस साल की पहली बारिश आते ही आप किस इलाके में पिकनिक मनाने जाएंगे।

बहुत ही सुंदर गाना आशा भोसले की आवाज़ में। और बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट से, एक श्रोता लिखती हैं कि हम तो सागर किनारे बारिश में भीगेंगे जैसे मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन मरीन ड्राइव पर भीगते हैं रिमझिम गिरे सावन गाने में, हम विशाखापट्टनम में इसी तरह के मज़े लेंगे। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आजकल वैसे रिमझिम फुहार वाली बारिश नहीं होती, आप कहीं बाहर आउटिंग के लिए जा सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, अब तो धूम धड़ाके के साथ बारिश होती है, ऐसा लगता है जैसे बहुत गुस्से के साथ बारिश हो रही है, कहीं रास्ते बंद, कहीं पुल टूट गए। अब बारिश से खुशी तो होती है पर उस खुशी को मनाने का मौका नहीं मिलता। एक और श्रोता है जो भोपाल से हैं और लिखते हैं कि भोपाल में पिकनिक मनाने की बहुत सारी जगह हैं, बरसात के मौसम में आसपास के जंगल और डैम्स पर पिकनिक मनाना बहुत अच्छा लगता है, केरवा डैम और कोलार डैम में हम जंगलों में जाएंगे। एक और श्रोता लिख रहे हैं कि गर्मी तो हर साल बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी त्वचा ज़्यादा संवेदनशील होने लगती है और ठंडी और गर्मी का असर ज़्यादा होने लगता है। एक और श्रोता ये लिख रही हैं कि हमारे यहाँ सुबह से बारिश हो रही है और

बारिश के साथ इस कार्यक्रम का हम आनंद ले रहे हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1980 में आई थी थोड़ी सी बेवफाई फिल्म आशा भोसले और खयाम। इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि जहां विविध भारती के जरिए बारिश के गाने बज रहे हैं, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश हो रही है। और इसके अलावा एक और श्रोता ये लिख रहे हैं कि इस साल बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ी है और हालत ख़राब हो गई है। इसके अलावा एक श्रोता का कमेंट है कि इस साल मारतंड अपने प्रचंड रूप में देखा गया है, जनजीवन बेहाल हो गया है। और बहुत सारे श्रोता हैं जो गर्मी से वाकई बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। गर्मी तो हर साल लगभग एक सी पड़ती है, ये बात अलग है, हम पिछले साल की गर्मी भूल जाते हैं और सामने जो गर्मी है उससे हम परेशान होने लगते हैं। खंडवा शहर के एक श्रोता कहते हैं कि हम भीषण गर्मी की चपेट में हैं, तेज़ धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का जनजीवन कठिन बना दिया है। दोपहर की तपती सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है और हर चेहरा बारिश की राह देखता रहता है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि बस अब तो बारिश हो जाए तो जैसे हमें थोड़ा सा सुकून मिलेगा। और इसके अलावा एक श्रोता का कहना यह है कि विविध भारती से जब बारिश के गाने बजेंगे तो हमें थोड़ा सा तो सुकून गर्मी से मिलेगा और क्या पता हमारे शहर में बारिश आ ही जाए। एक और श्रोता लिखते हैं, ये रे पाउसा तुला दे तो पैसा, पहला पैसा झाला खोटा, पाउसाला मोटा जैसे बचपन के गाने याद आ गए हैं, क्योंकि आज के सुरीला सफ़र की जो इबारत है वो बहुत बारिश वाली इबारत है। अभी अभी अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी को याद किया हमारी एक श्रोता ने, और बस अब हम भी वही गाना आप सभी के लिए प्ले करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस गाने में मुंबई के कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स, मुंबई के कौन कौन से इलाके, कौन कौन सी इमारतें या मशहूर जगहें आपको नजर आती हैं रुपहले पर्दे पर, कितनी जगहों के नाम आप लिख पाएंगे? और साथ में ये भी बताइए कि इस गाने को लिखा किसने है।

क्या तो शानदार गाना, बहुत ही प्यारा गाना। और योगेश जी ने इस गाने को लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि ये गाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुंबई के ज़्यादातर इलाकों से मैं परिचित नहीं हूँ, इसलिए इनके नाम नहीं बता सकता। लता जी की आवाज़ कानों में अमृत घोलती है। एक और श्रोता का कमेंट है। एक और श्रोता कहते हैं कि अकोला में बारिश हुई है, लेकिन आज बहुत बुरी तरह से गर्मी पड़ रही है। और इसके अलावा कई श्रोता ये लिख रहे हैं कि मुंबई के साथियों को ही पता होगा कि इस गाने में कौन कौन से इलाके नजर आते हैं। नहीं, मुंबई के बाहर के श्रोताओं को भी पता होगा मशहूर इलाके हैं। और इसके अलावा अमिताभ बच्चन इस गाने में बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लिखते हैं, ये बात एक श्रोता ने लिखी। एक और श्रोता ग्वालियर से लिख रही हैं कि पथरीला इलाका है और आज के गानों से थोड़ी राहत मिली है। एक श्रोता ने सुंदर कविता लिखी है, बताऊं क्या होते हैं बारिश के मायने, धड़कनों का मोर बन जाना है बारिश, सड़कों का संतूर बन जाना है बारिश, नदियों की गुल्लक भर जाना है बारिश, धरती का खुशबू हो जाना है बारिश, सूखे रेनकोट के भीतर तरबतर हो जाना है बारिश, शहरों का छप छप हो जाना है बारिश, रागों का घनघन हो जाना है बारिश, सीले ख्वाब का सुलग उठना है बारिश, पुराने एल्बम पलटना है बारिश, गुलजार पंचम और ब्लैक कॉफी है बारिश, छतरी ठेले से टिकाकर भुट्टे खाना है बारिश। क्या बात है, क्या बात है। इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने पहचानने की कोशिश की है, मरीन ड्राइव और विक्टोरिया टर्मिनस नजर आते हैं। ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है, मरीन ड्राइव नजर आता है, उसके अलावा ओवल मैदान नजर आता है, उसके अलावा राजाबाई टावर नजर आता है, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज और मुंबई का समुद्र। बहुत सारे श्रोताओं की बातें मिला के लगभग लगभग तय हो गया कि कौन कौन सी इमारतें और मुंबई के कौन कौन से इलाके इस गाने में नजर आते हैं। ये सिर्फ गीत नहीं, ये दो आत्माओं के बीच बहती उस भावना का गीत है जिसकी गवाह है बारिश। सौम्यता और कोमलता से भरपूर इस गाने को योगेश जी ने लिखा है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज आपकी इबारत सही साबित हुई, पिछली रात कुछ घंटे पहले बारिश की रिमझिम फुहारों ने हमारे अजमेर शहर की तपती धरती पर बरखा रानी के आने से सुबह झूम उठे हैं और घर के गार्डन के पेड़ पौधे भी लहरा उठे हैं, मानो उन्हें शिद्दत से इंतजार था। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो इंदौर से हैं, उनका कहना है कि सब जगह से बरसात की खबरें आ रही हैं, पर हमारे इलाके में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। कटक से एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हम अक्सर बारिशों में पुरी चले जाते हैं और सुंदर समुद्र तट पर सुकून मिलता है। और इसके अलावा कई शहरों में बारिश हो रही है, इसकी खबर हमें अपने श्रोताओं के कमेंट से मिली है। एक श्रोता ने सुमित्रा नंदन पंत की कविता लिखी है, झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छमछम छमछम गिरती बूंदें तरुओं से छन के, चमचम बिजली चमक रही उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, पंख खोल फैले हैं ताड़ों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल, तड़ तड़ पड़ती धारीवारी के उन पर चंचल, टप टप झरती करमुख से जल बूंदें झलमल। क्या सुंदर तो भाषा है, कितनी ललित भाषा। पहली बारिश के बाद नासिक के हम लोग पुणे, मुंबई, इगतपुरी, भंडारदरा जैसे इलाकों में जाते हैं। मुंबई का सबसे, महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा पर्वत कलसूबाई है, जहां से सैकड़ों झरने बहते हैं, वहां जाना बड़ा मजेदार होता है। एक श्रोता का कमेंट है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये बारिश मेरे लिए अफसोस लेकर आएगी, क्योंकि मेरा हम सफर इस दुनिया को छोड़कर चला गया। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जून 1978 में दिल्ली के आसपास एक महीने तक तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ था, तब बहुत बुरी हालत हो गई थी। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि इस कार्यक्रम का पहला अंक आपने पेश किया था और उसमें हमने हिस्सा लिया था। इसके अलावा उनको ये शिकायत है कि भाई इस इबारत में शब्द छाटना और उन शब्दों पर आधारित गीत बताना, बस यही इस कार्यक्रम का आपका मकसद है। ये थोड़े नाराज़ नज़र आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई प्रेम

एक प्रेरक विषय वस्तु दीजिए और इस तरह से कुछ और करिए। भाई आपका ये सुझाव जो है सर आंखों पर प्रेरक विषय वस्तु से आपका क्या तात्पर्य है, थोड़ा विस्तार दीजिएगा। और त्रिवेणी जैसा कार्यक्रम है जहाँ प्रेरक चीज़ें होती हैं, ये कार्यक्रम मनोरंजन का कार्यक्रम है। एक और श्रोताएं जो लिखते हैं कि हम सागर किनारे बारिश में भीगेंगे। उसके अलावा कुछ और श्रोताओं ने बारिश के बारे में लिखा है। एक अहमदाबाद के श्रोता का कमेंट है जो लिखते हैं कि भाई इस बार जो हालत है वो बहुत ज़्यादा संगीन है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बचपन में बारिश की एक एक बूंद को मैं बड़े ध्यान से देखती, लगता आसमान में बैठा कोई जल तरंग का साज छेड़ रहा है। वो न जाने किस दिशा से आती और सब कुछ भिगो जाती, हम उसे कुछ भी भिगोने से रोक नहीं पाते, और जब वो चली जाती तो उसे रोकते बारिश बचपन की स्वर लिपि है। ये हमारी एक श्रोता का कमेंट। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। हर गाना जो है वो बारिश का गाना नहीं है आज के इस कार्यक्रम का। अगला गाना ये है, क्या आपको फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम पता है?

एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज मेरी सूची तो फेल हो गई है, बस यही खासियत है आपकी, आपकी मौलिकता कुछ अलग है और अदा भी अलग है। शुक्रिया भाई। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि मजरू सुल्तानपुरी, लता मंगेशकर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, क्या बात है। ये बिल्कुल मेरे अंदाज में लिखा गया है। एक श्रोता हैं लिखती हैं कि बारिश तो अच्छी लगती लेकिन कीड़े मकोड़े, मेंढक, बिजली वाले कीड़े, इन सबसे थोड़ी परेशानी होती है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि आज जो बारिश के इंतज़ार पर आपने कार्यक्रम किया है, इतनी गर्मी है हमारे शहर में कि बस इस कार्यक्रम को सुनकर ही थोड़ी राहत मिल रही है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बचपन में जब बारिश होती थी तो मैं लोहे का तवा उलट कर रख देती थी क्योंकि घर के बड़े बोलते थे कि तवा उलट कर रख देने से बारिश बंद हो जाती है क्योंकि उस समय कीचड़ हो जाता था और वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक और श्रोता लिखते हैं कि शहर जयपुर में गोठ और सवामणि का दौर शुरू हो जाता है जिसमें दाल बाटी, चूरमा और अन्य चीज़ें होती हैं। हम भी आज जाएंगे सवामणि में, जयपुर के ही रमणीक स्थल पाल के बालाजी, ये उन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि 1968 में आई फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का ये गाना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि परसों बारिश हुई थी रात को 11:30 बजे और उसके बाद हम बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारी शादी वाले दिन भी इतनी बारिश हुई थी कि शादी मंडप में नहीं कमरे में करनी पड़ गई थी। जी जी। इसके अलावा एक और श्रोता दिल्ली से लिख रहे हैं कि बड़ी उमस, बड़ी परेशानी है और आपने जिस तरह से बारिश के गाने सुनवाए, शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और अब ये गाना आ रहा है। अच्छा ये बताइए कि जब बारिश आती है तो आपके जहन में पहला गाना कौन सा गूंजता है, आपका वाला बारिश का गाना कौन सा है, फटाफट बताइए।

भाई बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आ रहे हैं और एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा वाला जो गाना था वो तो आप सुना चुके हैं, रिमझिम गिरे सावन। भाई खुशी हुई कि आपका वाला गाना बजा है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं, जिंदगी भर भूलेगी नहीं भूलेगी बरसात की रात, ये वो गाना है जो मेरा वाला बारिश का गाना है। इसके अलावा रिमझिम गिरे सावन एक और श्रोता है, उनका फेवरेट गाना है बारिश आते ही जो उनके जहन में आता है, और रोटी कपड़ा और मकान का एक गाना हाय हाय ये मजबूरी कुछ श्रोताओं के जहन में आता है, वो घटा सावरी कुछ श्रोताओं के जहन में आता है, बरखा रानी जरा जम के बरसो भी कुछ श्रोताओं का बारिश का गाना है, और इसके अलावा रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, या काली घटा छाए मोरा जिया भरमाए, रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, देखिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बन गई। इतने सारे श्रोताओं ने अपने अपने बारिश के गाने दिए हैं। एक श्रोता है जिन्होंने कहा है कि जब बारिश आती है तो मुझे काला बाजार फिल्म का गाना याद आता है, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई मुझको वो पहली मुलाकात। और उसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोताओं ने बारिश के गाने दिए, लेकिन अभी मुझे बजाना है ये वाला गाना, नीरज के बोल एस टी बर्मन की तर्ज है। किस फिल्म का ये गाना है ये बताइए।

0: समझ में आया आपको कि ये गाना आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने से रह गया। और इसके अलावा एक शायद और गाना है जो हम चाहते थे कि इस कार्यक्रम में शामिल हो जाए, लेकिन वो भी वक्त की कमी की वजह से शामिल नहीं हुआ। पर आप तो जानते हैं कि आप सभी के कमेंट्स भी पढ़ने हैं इस कार्यक्रम में, और आप सभी की बातें भी तो जाननी है।
1: ले प्यार ने अंगड़ाई दीवाना हुआ।
0: तो आज का सुरीला सफर कार्यक्रम बारिश के इंतजार पर केंद्रित था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। हम यही दुआ करेंगे कि आपके शहर में भी जल्दी बारिश आए और आप सभी को गर्मी से निजात मिले। आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।

आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब अपने आखिरी मकाम पर आ चुका है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आ रहे हैं और कुछ गाने हैं जो रह चुके जिन्हें इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सका, जैसे कि ये।

नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे चैतन्य पर। चेतना का पता बित्ता भर खिड़की से मत पूछो। उसे अगर सचमुच जानना है तो पहले आंगन का रास्ता मालूम करो। दुनिया हमारी आंखों में बसी है, हम उसे जितना चाहें फैला लें और जितना चाहें सिकोड़ लें। चाहें तो हम इस अनंत ब्रह्मांड को नकार दें और चाहे तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सत्ता को स्वीकार कर लें। इस दुनिया में ईश्वर एक अकेली ऐसी शय है जिसका दावा बिना प्रमाण के किया जा सकता है और जिसे बिना प्रमाण के खारिज भी किया जा सकता है।

ये बात चौंकाने वाली है कि हर चीज बदल चुकी है पर फिर भी वैसी ही है। तेज कोलाहल करके बहती हुई किसी धारा की कल्पना कीजिए, जैसे ही वो मुड़ती है कोई एक बूंद बुलबुले की तरह टूट जाती है। बुलबुला छोटी छोटी बूंदों में तब्दील हो जाता है और बूंदें एक छोटी सी लहर बनकर धारा में समा जाती हैं। दृष्टि बूंदों पर ध्यान लगाने की कोशिश करती है पर व्यर्थ, संभव ही नहीं है ये, क्योंकि बूंदें तो है ही नहीं, वहां तो बस धारा है।

वो जो पल पल अलग होकर भी अंततः एक ही है, वहां ना पूर्णता है ना अपूर्णता, फिर क्या है वहां? वहां जो कुछ भी है वो पल पल बदल रहा है, हम उसे देख सकते हैं, उसे हर पल महसूस कर सकते हैं, उसके साक्षी बन सकते हैं, मगर उसे पकड़ नहीं सकते, उसे छूकर उसके भौतिक होने का प्रमाण नहीं दे सकते, लेकिन उसके साथ पूरी चैतन्यता के साथ चलते रह सकते हैं, बहते रह सकते हैं अनंत की ओर, अपूर्णता से पूर्णता की ओर।

चलिए हम भी कोशिश करते हैं अपूर्णता से पूर्णता की ओर चलने की। आज त्रिवेणी में बस इतना ही। आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
2: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।

0: मच।
1: राजदूत सिंगला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है, जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति ने कहा,
5: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल एनवायरनमेंट्स, द इंडियन आर्मी मस्ट रिमेन अडॉप्टिव एंड फ्यूचर रेडी। आई अर्ज यू टू बी लाइफ लॉन्ग लीडर, लर्नर्स, कोरेजस डिसीजन मेकर्स एंड एथिकल लीडर्स।
4: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
6: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और CCTV तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
2: समारोह में सुखोई 30, MKI, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह

0: मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
2: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई।

0: है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने सदाबहार नगमे।

विविध भारती से आप सुन रही हैं सदाबहार नगमे। मुकेश की आवाज में आपने सुना फिल्म आशिक का गाना और अब आरजू फिल्म का गीत लता मंगेशकर।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आरजू फिल्म का गीत आपने सुना, हंसरत जयपुरी के बोल थे, संगीत शंकर जयकिशन का था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफ़ेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीज़ें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मुंजाई गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और अगले गाने की फरमाइश की है बीड़ शहर से प्रकाश पगारिया ने। इसके अलावा गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक और मीका विरक, बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक प्राची और तनु करमरकर। इसी गाने की फरमाइश की है रेडियो कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और पूरे डागला परिवार ने। और इसके अलावा उन पाटिया सूरत से नसीम बानो और मोहम्मद आसिफ और शाहीन बानो ने। सुनिए कभी कभी फिल्म का ये गाना, साहिर लुधियानवी, खयाम।

मंच गीत कार्यक्रम का अगला गाना गोविंद गढ़ मांझी वाला करणपुर राजस्थान से राजू टुटेजा, खुश दिल उर्मिला टुटेजा, गुड्डू जीनू मम्मू स्माइल टुटेजा और शिव सेठी की फरमाइश पर है। इसी गाने को सुनना चाहते हैं खंडवा से दीपक कुमार, अनीता, समर्थ शाह, श्वेता शाह, अदिति शाह और अर्पित शाह। इसके अलावा फरमाइश करने वाले श्रोता हैं रामेश्वर बाबूजी और राम सर मेड़ता राजस्थान के ये श्रोता हैं, समेलाल घीवर, युवांश, कुणाल, गोविंद, ममता और मुन्नी धमनी किरवाई के श्रोता। और ये फरमाइश है बड़वाह मध्य प्रदेश से प्रवीण और मीना की। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना, फिल्म का नाम है भाभी, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त की तर्ज़।

कार्यक्रम का अगला गाना आप सभी की फरमाइश पर है। इंदौर से सृष्टि उपाध्याय, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, राजाजीपुरम लखनऊ से मोहम्मद दानिश, एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुल निसा, शकील अहमद और शहनाज, खुरई मध्य प्रदेश से राम सखी, परमानंद सौरभ, गौरव, एल पी रोहित, लल्लू राम, पूरण रोहित, छोटू डूंडनुन और इनका पूरा परिवार, और इसके अलावा भोपाल से रविकांत गुप्ता, किरण गुप्ता, आशीष और सुप्रिया। अब सभी की फरमाइश पर खुशबू फिल्म का ये गाना।

इस गाने की फरमाइश सिमगा से रमेश यादव, माया यादव, रिंकू सनी और कोमल की है, और छतरपुर से रामेश्वर रैकवार, दीपक अहिरवार, मुकेश राकेश और सुनील रैकवार।

0: ये था आज का मनचाही गीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।
1: मनचाही गीत
2: मनचाहेगी।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
4: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार पहला भाग।

0: दासी।
1: हाँ राजकुमारी।
0: गांधार की सीमा कहाँ समाप्त होगी?
1: आप इतनी अधीर क्यों हैं?
0: लगातार इतने दिनों की यात्रा, कितनी नदियाँ, कितने पर्वत, मेरी शिविका की डोलती हुई तालबद्ध गति, इसके बाद भी
1: क्या राजकुमारी?
0: ये सब कुछ जो मेरा है, इसके स्थायी रूप से छूट जाने का भय, उसकी कसम।
1: आप तो व्यर्थ ही भावुक हो रहे हैं राजकुमारी गांधारी।
0: किंतु एक बात बता, क्या मेरी तरह किसी वधु की यात्रा हुई है अब तक? विवाह तो पिता के घर होता है, उसके बाद वधु अपने पति के रथ पर आरूढ़ होती है, उसके बिल्कुल निकट।
1: राजकुमारी।
0: हाँ, मैं पिछले कुछ वर्षों से एक स्वप्न देखा करती थी। एक दिन वो आएगा, मेरे स्वप्नों का राजकुमार। सुनहरा रथ होगा उसका, और उसमें जुते होंगे हंसों की तरह उज्जवल, विद्युत की भांति गतिमान धवल अश्व। यदि रथ पर वो होता तो मेरी ये यात्रा क्या इतनी निर्जीव होती? न जाने क्यों कभी कभी मेरे मन में भय की आंधी उठती है, कहीं कहीं यह यात्रा मेरे स्वप्नों की शव यात्रा न।
1: राजकुमारी, आपके मुंह से ऐसी अशुभ बात।
2: सुनो, हम गांधार राज्य की सीमा पर पहुंच गए हैं। हमारा दल आज रात्रि यहीं विश्राम करेगा। कल सूर्योदय से पूर्व ही हमारी हस्तिनापुर की यात्रा प्रारंभ होगी। राजपुत्र शकुनी की आज्ञा का पालन हो।

0: राजकुमारी, आप अभी तक सोई नहीं?
1: प्रयत्न करने के बाद भी नींद नहीं आ रही।
0: आप अकारण ही बहुत सोचती हैं। आपकी शंकाएं निर्मूल हैं, आपका भय अकारण है।
1: तो मेरे लिए स्वयंवर का आयोजन क्यों नहीं हुआ? मुझे अपने अधिकार से वंचित क्यों रखा गया?
0: स्वयंवर होता भी तो क्या आप दूसरा निर्णय ले सकती थी? हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र को छोड़कर क्या आपकी जयमाला दूसरे के गले में पड़ सकती थी? इसे अपना सौभाग्य समझिए कि स्वयं महाराज भीष्म आपके लिए प्रस्ताव लेकर आए।
1: भीष्म, ये नाम बार बार सुनकर मुझे क्रोध आने लगा है। हर बात में भीष्म, जैसे वो विधाता हो, नियामक हो।
0: पूरा जीवन जिसने त्याग किया हो, अपने सुख का सर्वस्व देकर जिसने हस्तिनापुर की शक्ति को अनुप्राणित किया हो, उस भीष्म का नाम तो आएगा ही।
1: मेरा मन तो दूसरी ही बात सोचता है।
0: अब सोचना बंद करें राजकुमारी, अपनी मनस्थिति को भावी जीवन के लिए ढालने का प्रयत्न करें।
1: लाख प्रयत्न करती हूँ किंतु उस विचार से छुटकारा नहीं मिलता। मुझे लगता है मेरे पिता ने मुझे बेच दिया।
0: राजकुमारी,
1: भीष्म की शक्ति के सामने अपना शीश झुका दिया है।
0: फिर वही
1: अपनी राजनीतिक सुरक्षा के लिए मुझे बलि बनाया जा रहा है। ये कार्य व्यापार ऊपर से जितना सीधा सरल दिखाई देता है उतना है नहीं।
0: जब आपने पहले से ही धारणाएं बना ली हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन राजकुमारी, जब आप हस्तिनापुर पहुंचेंगी तो आपका भव्य स्वागत होगा, और जब आप वहां का वैभव देखेंगी तब गांधार को सदैव के लिए भूल जाएंगी, और तो और मुझे भी भूल जाएंगी।
1: ईश्वर करे तेरी ही वाणी सच निकले।

0: राजकुमारी, मैं कहती थी ना, देखिए पूरा हस्तिनापुर उमड़ा रहा है। मार्ग के दोनों ओर सहस्त्रों व्यक्ति आपके स्वागत में खड़े हैं। आपके आगमन से हस्तिनापुर में कितना उत्साह है। और वो देखिए, आपके मार्ग पर फूल बिखरे हुए हैं।
1: सचमुच हस्तिनापुर अद्भुत नगरी है। इतने ऊंचे ऊंचे भवन, इतने सुंदर उद्यान, इतना धन धान, जितना सुना था उससे कहीं अधिक। वो देखो, वो कौन भव्य राजपुरुष खड़ा है?
0: वो ही तो है भीष्म पितामह, कुरुवंश की सत्ता के केंद्र बिंदु, सत्य जिनका व्यक्तित्व है, त्याग जिनका श्वास है, तपस्या जिनकी देह है, ब्रह्मचर्य का तेज जिनकी आत्मा है। वो भीष्म स्वयं आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। हस्तिनापुर का प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपकी अगवानी करने खड़ा है। राजकुमारी,
1: राजकुमार धृतराष्ट्र भी?
0: वो अभी कैसे आएंगे, उनसे तो विवाह मंडप में ही भेंट होगी। इतनी भी अधीरता अच्छी नहीं है राजकुमारी। देखिए, महाराज भीष्म रथ की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें आगे बढ़कर प्रणाम कीजिए।
1: कुरुवंश के महापराक्रमी तपस्वी महापुरुष को ये गांधार कन्या प्रणाम करती है।
2: आयुष्मती भव, कहो पुत्री, यात्रा कैसी रही? कोई कष्ट तो नहीं हुआ?
1: कुल देवता की कृपा और आपके आशीर्वाद से यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई महाराज।
2: पुत्री गांधारी, आज तुम्हारे आगमन के साथ ही मैं एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व से मुक्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है राजकुमार धृतराष्ट्र के व्यक्तित्व के अधूरेपन को तुम भर दोगी। तुम्हारे आगमन के साथ ही हस्तिनापुर के जीवन में सुख के नए अध्याय का प्रारंभ होगा।
1: मैं आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगी महाराज।
2: साधु, मैंने तुम्हारी और राजकुमार शकुनी के ठहरने की व्यवस्था एक विशेष भवन में कराई है। चलकर विश्राम करो।
1: जो आज्ञा।

0: तो कुछ बोलती क्यों नहीं? शकुनी कब गांधा लौट रहा है? तू बोलती क्यों नहीं?
1: राजकुमारी, अब राजकुमार शकुनी गांधार नहीं लौटेंगे।
0: क्यों?
1: वे अब स्थायी रूप से यहीं रहेंगे। भीष्म पितामह ने उनके लिए अलग भवन की व्यवस्था कर दी है।
0: लेकिन शकुनी क्यों रहना चाहता है? अपनी बहन के ससुराल में आश्रय लेना क्या उसके लिए सम्मानजनक होगा? क्या यहाँ के वैभव ने उसे भी मोल ले लिया? तू चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं?
1: राजकुमार शकुनी आपके हित में यहाँ रहना चाहते हैं।
0: मेरे हित में? क्या मैं अपंग हूँ? क्या मुझमें विचार शक्ति नहीं है?
1: मुझसे न पूछे तो अच्छा है। सत्य को कह पाने का साहस मुझ में नहीं है। संभवतः सत्य को देख पाने का साहस आप भी ना बटोर सके।
0: ऐसा क्या हो गया? मैं नहीं चाहती कि शकुनी यहाँ रहे। यहाँ कितना भी वैभव क्यों ना हो, किंतु उसका यहाँ रहना बहुत अपमानजनक है। मैं चलकर उसे समझाती हूँ।
1: अब बहुत देर हो गई है राजकुमारी। राजकुमार शकुनी का यहाँ रहना सचमुच आपके हित में है। मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना बड़ा षड्यंत्र आपके विरुद्ध रचा जाएगा। उस षड्यंत्र में भीष्म पितामह जैसे तपस्वी व्यक्ति और आपके पिता जैसे तेजस्वी व्यक्ति सम्मिलित होंगे।
0: षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र?
1: प्रवंचना हुई है राजकुमारी, जिसे हम स्वर्ग समझ रहे थे और कुछ नहीं, एक चिरंतन अंधकारमय पथ की अनंत यात्रा है। ये वैभव, ये सम्मान, पद, सत्ता, सब रेत की नींव पर खड़ा ऐंद्रजालिक भवन है राजकुमारी। अब ईश्वर ही आपकी रक्षा कर सकता है। हाँ राजकुमारी, सत्य के कुरूप जुगुप्समय स्वरूप का साक्षात्कार कीजिए। अपने हाथों अपने सभी स्वप्नों का अग्नि संस्कार कीजिए। यदि साहस है तो सुनिए, महाराष्ट्र धृतराष्ट्र ज्योतिहीन है, जन्मांध, सूर्य के प्रकाश के अस्तित्व का उन्हें बोध नहीं, वो दृष्टिहीन है, दृष्टिहीन।

0: पुत्री गांधारी, तुमने नेत्रों पर पट्टी क्यों बांध ली? खोल दो इसे।
1: नहीं आर्य श्रेष्ठ, ये संभव नहीं। ये मेरी प्रतिज्ञा है।
0: प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा?
1: महाराज, मेरे पति दृष्टिहीन है। उन्होंने संसार का दृश्य सुख एक क्षण के लिए भी नहीं भोगा है। उनके भाग्य में अनंत अंधकार है। उनके दुख के साथ समरस होने के लिए क्या ये आवश्यक नहीं कि मैं भी अंधत्व को अंगीकार कर लूं?
0: किंतु तुमने धृतराष्ट्र को देखा कहां? कल विवाह के समय उसे एक बार देख तो लो।
1: क्या लाभ? क्या वे मुझे देख पाएंगे? जब वे मुझे बिना देखे स्वीकार कर सकते हैं, तो क्या मैं उन्हें बिना देखे स्वीकार नहीं कर सकती? उन्हें देखकर संभव है मेरे मन में मोह जाग जाए, संभव है मेरी प्रतिज्ञा डगमगाने लगे।
0: तुम अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझती भी हो?
1: धृष्टता के लिए क्षमा करें देव, किंतु आपसे एक प्रश्न पूछूं?
0: पूछो।
1: आपने कभी अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझा
0: गांधारी?
1: या आपने अर्थ समझकर ही प्रतिज्ञा की थी? हाँ आर्य श्रेष्ठ, पूरा जीवन एकाकी बिताने की भयावह प्रतिज्ञा क्योंकि आपने केवल पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ही ना, केवल एक आदर्श स्थापित करने के लिए। फिर मुझे क्यों रोकते हैं?
0: विवाह के पश्चात तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व ही सापेक्ष हो जाएगा। तुम्हारे निर्णयों के सुख दुख धृतराष्ट्र को भी भोगने पड़ेंगे। मैं फिर कहता हूं, मेरी और तुम्हारी प्रतिज्ञा के आधार ही अलग है। हट, छोड़ दो।
1: अब संभव नहीं है आर्य श्रेष्ठ, राजपुत्र के दृष्टिहीन होने की जान

0: चमत्कारी, यदि मुझे गांधार में ही मिल गई होती तो मैं वहीं से आंखों पर पट्टी बांधकर चलती, किंतु मेरे साथ प्रवंचना की गई है।
1: प्रवंचना का विचार मेरे मन में कभी नहीं था गांधारी, किंतु जो कुछ हुआ उसके लिए मैं लज्जित हूं।
0: कुरुवंश में ये पहली घटना नहीं है आर्य श्रेष्ठ, आप इसी प्रकार अंबा, अंबिका और अंबालिका को भी उठा लाए थे। उन भोली कन्याओं से आपने ही स्वयंवर का अधिकार छीना था। अंबा का सारा जीवन इसी दुख की आग में चलता रहा।
1: उस घटना का स्मरण न दिलाओ पुत्री।
0: क्यों ना दिलाऊं? आज जन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करने के बाद भी आप ऐसे राजपुत्रों के विवाह में रुचि लेते रहे जो स्वयंवर में वरमाला के अधिकारी नहीं हो सकते थे।
1: तुम नहीं जानती गांधारी, मैंने विवाह नहीं किया, किंतु अपने पिता का वंश दीप प्रज्वलित रखने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ।
0: और आपकी वचनबद्धता की वेदी पर मेरी बलि दी जा रही है। आर्य श्रेष्ठ, मैं अंबा नहीं बन सकती, किंतु गांधारी तो बनी रह सकती हूँ। मेरी आंखों पर बंधी यह पट्टी राजनीति, शक्ति और सत्ता द्वारा स्त्री की स्वाधीनता पर किए गए आक्रमण का एक ऐतिहासिक स्मृति चिन्ह बनकर रहेगी।
1: गांधारी, अपने निहित स्वार्थ के लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया, फिर भी यदि तुम्हारे प्रति मुझसे अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा करो।
0: मैं क्षमा करने वाली कौन होती हूँ? और अपराध करने के बाद क्षमा मांगने के शिष्टाचार में मेरा विश्वास भी नहीं है। इस प्रवंचना ने संसार के प्रति मेरा विश्वास ही छीन लिया है। अब इस संसार को खुली आंखों से देखने की न इच्छा है न साहस। आर्य श्रेष्ठ, विवाह की तैयारी कीजिए।

0: कौन?
1: मैं।
0: मैं?
1: धृतराष्ट्र।
0: ओह, आप! विवाह के बाद हमारी पहली रात्रि है, आइए आइए ना।
1: मुझे तनिक सहारा दो गंधारी, न जाने क्यों इन लोगों ने मेरा कक्ष बदल दिया। जानते तो हैं स्थान बदल जाने से मुझे कितनी कठिनाई होती है। अपना हाथ मुझे दो गंधारी।
0: किंतु महाराज, मैं मेरे लिए भी तो
1: क्या?
0: अच्छा, आप वहीं रुकिए, मैं आ रही हूं।
1: क्या हुआ? खीर पड़ी?
0: लगता है किसी पात्र से टकरा गई। फिर प्रयत्न करती हूँ।
1: प्रयत्न? तुम्हें भी प्रयत्न करना पड़ता है?
0: मेरे लिए ये बहुत नया नया है महाराज, किंतु कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा।
1: तो क्या तुम भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताग्रज भीष्म ऐसा नहीं कर सकते। माता सत्यवती झूठ तो नहीं कह सकती। उन्होंने तुम्हारी आंखों की उपमा कमल, हरिण, भ्रमर, न जाने किस किस से दी थी।
0: महाराज,
1: गांधारी, मैंने न हरण देखा है न कमल, परंतु सोचता हूं लोग जिसे सुंदर कहते हैं वैसी तो आंखें अवश्य होंगी तुम्हारी, किंतु तुम भी?
0: क्या माता सत्यवती और भीष्म पितामह ने आपको कुछ नहीं बताया?
1: क्या?
0: महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझे स्वयं सहारे की आवश्यकता है।
1: क्या तुम भी ज्योतिहीन हो?
0: नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है महाराज, मैंने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है।
1: क्या?
0: मेरा पातिव्रत यही मांग करता है, यदि आप संसार को नहीं देख सकते तो मुझे भी कोई अधिकार नहीं है। मैंने अंधत्व स्वयं धारण किया है।
1: और तुम इसे पातिव्रत कहती हो? ये तुमने क्या किया गंधारी? ये किसने कह दिया तुमसे कि इससे मैं प्रसन्नता का अनुभव करूंगा?
0: तो क्या आप इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न नहीं हैं?
1: मैं अंधत्व का दुख जानता हूं गंधारी। मैं तो सोचता था तुम्हारी आंखों से संसार को देखूंगा, तुम मेरा अधूरापन किसी सीमा तक पूरा कर दोगी, और तुमने स्वयं अंधत्व स्वीकार कर लिया।

0: यानी अब हमारी गृहस्थी में केवल अपूर्णता, केवल दृष्टिहीनता।
1: नहीं महाराज, मैं सोचती थी कि
0: अब भी समय है गांधारी, तोड़ दो अपनी प्रतिज्ञा। देखो मैं तुम्हारी दृष्टि का सहारा लेकर जीना चाहता हूं।
1: किंतु मैं तो प्रतिज्ञा कर चुकी
0: हूं। गांधारी देख लेना, तुम्हारी ये प्रतिज्ञा न तुम्हें सुखी बना पाएगी, न मुझे और न कुरुवंश को। ये अंधत्व हमें बहुत महंगा पड़ेगा। ये सत्य सहनीय है, असहनीय है ये सच। असहनीय है ये सत्य।

0: महारानी की जय हो। देवी, एक समाचार है।
1: क्या?
0: महारानी कुंती को पुत्र लाभ हुआ है।
2: पुत्र लाभ?
0: हाँ महारानी,
2: बहुत शुभ समाचार है। कुरुवंश की नई पीढ़ी का पहला प्रतिनिधि जन्मा है। महाराज ने महोत्सव के आयोजन की घोषणा कर दी ना?
0: आश्चर्य है महारानी।
2: क्यों, इसमें आश्चर्य की क्या बात? क्या ये स्वाभाविक नहीं?
0: आप नहीं समझेंगी महारानी, कभी नहीं।
2: क्या?
0: महारानी कुंती का पुत्र ही अब हस्तिनापुर का।
2: पगली कहेगी, क्या तू तो जानती नहीं कि महाराज धृतराष्ट्र ज्येष्ठ है? वस्तुतः वे ही महाराज हैं, इसलिए ये निर्विवाद है कि नियमानुसार उनका ही पुत्र राज्य का अधिकारी होगा। महाराज पांडु तो शासन संचालन में महाराज के मात्र सहायक हैं। तेरा भ्रम निरर्थक है।
3: कांधारी,
2: महाराज आ रहे हैं, तू जा।
0: जो आज्ञा महारानी।
3: सुना तुमने कांधारी, महर्षि व्यास का मंत्र सिद्ध हो गया, कुंती ने पुत्र को जन्म दिया।
2: हाँ महाराज, सुना, जानकर सुख भी मिला। महाराज पांडु की स्वीकृति लेकर महारानी कुंती ने धर्मराज का जो आवाहन किया था वो फलीभूत हुआ।
3: हाँ गांधारी, मैंने समस्त हस्तिनापुरी को सुसज्जित करने का आदेश दे दिया है। निरंतर 3 दिन तक भव्य आयोजन होगा। क्यों, उचित है ना?
2: सर्वथा उचित है महाराज। वंश वृद्धि का समाचार भला किसे सुखदायक नहीं लगता। किंतु क्या कुंती पुत्र ही अब राज्य का उत्तराधिकारी भी होगा?
3: उत्तराधिकारी? इस विषय पर तो हमने सोचा नहीं थी गांधारी।
2: महाराज, ज्येष्ठ तो आप हैं, राजा तो आपका ही पुत्र होना चाहिए।
3: होना चाहिए गांधारी, ये ठीक है, परंतु मेरी असमर्थता के कारण राज्य का सारा कार्य संचालन तो पांडु ने ही किया है। क्या उसके पुत्र का कोई अधिकार नहीं होगा?
2: महाराज, कहीं आपके हृदय की उदारता आपके पुत्र के जीवन के लिए अभिशाप न बन जाए?
3: मैं दृष्टिहीन हूँ देवी। यदि पिताग्रज भीष्म चाहते और पांडु हट करते तो क्या मुझे शासनाधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था? परंतु उन दोनों ने ऐसा नहीं किया। मैं इतना कृतज्ञ तो नहीं कि उनके उपकार भूलकर उनकी संतान को उसके अधिकार से वंचित कर दूं?
2: अर्थात हस्तिनापुर का भावी शासन?
3: नहीं जानता देवी, अन्य विवादों की भांति इसका निर्णय भी महाराज भीष्म करेंगे।
2: किंतु महाराज, ये तो अनर्थ होगा।
3: धैर्य रखो देवी गांधारी, कौन जानता है हमारे वंशजों के लिए नियति के गर्भ में क्या छिपा है। सुनो, गर्भधारण तो महारानी कुंती और तुमने साथ ही किया था। नियति तुम्हारे पक्ष में भी हो सकती थी, तुम्हारी कोख से भी हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ।
2: महाराज,
4: महाराज धृतराष्ट्र की जय हो।
3: कहो सूत।
4: महाराज भीष्म विशेष मंत्रणा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
3: अब हमें अनुमति दो देवी गांधारी, ईश्वर कल्याण करे।

मेरी कोख से भी तो हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्यों नहीं, क्यों नहीं हुआ? पर भले ऐसी कोख का क्या लाभ? ऐसी संतान से क्या मैं बाजी नहीं रह सकती थी?

0: महारानी, एक बार, केवल एक बार।
1: नहीं,
0: देखिए तो कितना तेजस्वी है, कितना चौड़ा माथा, देह की स्वर्ण कांति, सुनहरे केश,
1: आंखें कैसी हैं?
0: बहुत मोहक।
1: काश मैं देख सकती।
0: किस पर किया है?
2: किस पर?
0: दोनों पर। आप दोनों की आकृतियों में जो सुंदरतम है वही इसने पाया है। महारानी, क्या आप इसे देखेंगी नहीं? एक बार तो देख लीजिए।
1: नहीं, मैं इसे नहीं देख पाऊंगी।
0: एक क्षण के लिए देख लीजिए, विश्वास रखिए, मैं किसी से नहीं कहूंगी।
1: नहीं, एक बार देख लेने के बाद मेरा मोह पड़ जाएगा, इसके बाद आंखों पर पट्टी बांधने की इच्छा ही नहीं होगी। रहने दे।
0: कैसा भाग्य लेकर जन्मा है ये बालक। माँ देखना नहीं चाहती, पिता देख नहीं सकता, ना जाने संसार को ये किस दृष्टि से देखेगा।

0: महाराज द्रुपद के यहाँ से अभी तक कोई समाचार नहीं आया।
1: क्या आपको विश्वास है कि द्रौपदी दुर्योधन का वरण करेगी?
0: क्यों नहीं, दुर्योधन से कौन स्पर्धा कर सकता है।
1: हाँ, कुंती के पुत्र अब कहाँ है, उन्हें तो वारणावत का लाक्षाग्रह खा गया।
0: बहुत दुखद प्रसंग है ये गंधारी। कई बार हृदय में आशंका उठती है कहीं इसमें दुर्योधन का कोई षड्यंत्र तो नहीं।
1: इस आशंका का कारण?
0: कोई विशेष कारण नहीं, दुर्योधन पांडवों के प्रति सदैव ईर्ष्यालु रहा है। फिर शकुने की मंत्रणा और साहचर्य सुखद तो हो नहीं सकते।
1: महाराज, पांडवों के प्रति आपका अतिरिक्त मोह ही दुर्योधन की ईर्ष्या का कारण रहा है।
0: ये क्या कह रही हो गंधर?
1: हाँ महाराज, बाल्यकाल से ही भीम और अर्जुन मेरे पुत्रों को सताते रहे हैं, पर आपने कभी उन्हें प्रताड़ित नहीं किया। यदि दुर्योधन भीम पर अंकुश न रखता, समय समय पर उसे पराजित न करता, तो आज मेरे पुत्रों में से अधिकांश तो जीवित ही ना रहते।
0: जानता हूँ गंधारी, सोचता था पांडु नहीं रहे तो पांडवों की चिंता का भार भी मुझ पर ही आ पड़ा है। सचेष्ट था कि अनजाने में भी कहीं पांडवों के प्रति मुझसे अन्याय न हो जाए, इसीलिए जब तक पांडव रहे उनके प्रति सहृदय रहा। संभव है इसी भावना ने मुझे अपने पुत्रों के प्रति किंचित निर्मम बना दिया। तुम समझते हो मैं अपने पुत्रों से प्रेम नहीं करता?
1: नहीं महाराज, मेरा ये आशय कदापि न था।
2: महाराज।
0: कौन? विदुर, आओ आओ।
2: बहुत शुभ समाचार है महाराज।
0: अच्छा?
2: द्रुपद नरेश के यहाँ से अभी अभी दूत आया है।
0: स्वयंवर का क्या हुआ?
2: हमारा कुल शक्ति संपन्न हो गया है महाराज। द्रौपदी अब पुत्र वधु के रूप में हस्तिनापुर आ रही है।
1: मुझे विश्वास था कि दुर्योधन अवश्य जीतेगा।
2: क्षमा करें देव, द्रौपदी का वरण दुर्योधन ने नहीं अर्जुन ने किया है।
1: अर्जुन ने?
0: अर्जुन जीवित है?
2: हाँ महाराज, भाग्यशाली पांडव जीवित हैं।
0: कैसे?
2: लाक्षाग्रह का निर्माण किसी का षड्यंत्र था महाराज। पांडवों को उसका आभास हो गया था, वे वहां से वेश बदलकर बच निकले। स्वयंवर की शर्त पूरी होने पर ही पांडवों ने अपना वास्तविक परिचय दिया।
0: विदुर, तुम्हारी इस शुभ सूचना से मुझे असीम आनंद हो रहा है। मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। समस्त हस्तिनापुरी को सज्जित किया जाए, मंगलोत्सव का आयोजन हो, पांचाल राज की पुत्री का भव्य स्वागत किया जाए।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। और आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। आइए आज सुनते हैं इस गपशप का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया, जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
3: सोया था नस नस में, अब ये जग गया, ए, लहू मुलग गया।
2: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक की बीट्स पर दौड़ाती रहती है।

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं।
1: तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
2: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
1: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
2: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आप कोरियोग्राफी करते थे?
0: हाँ, लेकिन
1: स्कूल्स में
0: और
1: कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है, उसके नुएंसेस अलग होते हैं,
0: एकदम अलग सर,
1: उसकी ट्रिक्स अलग होती हैं।
0: एब्सोल्युटली,
1: वो तो आप जानते नहीं थे।
0: एब्सोल्युटली,
1: फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया?
0: फिल्मी जो मुझे मिली, पहली फिल्म जो थी, छोटा सा यू नो कोरियोग्राफी का सेक्शन था, लगान में वॉल्स का सेक्शन था, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
1: एक तो और बड़े कलाकार को, बड़ी फिल्म थी, महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म, फिल्म बन रही है।
1: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा, तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए, वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
0: एक्चुअली मैं कहूंगा कि यू नो मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली, तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज़्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया था।
1: जाहिर सी बात है ना,
0: लेकिन एक्चुअली बोलूँ वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूँ, लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे, तो वो लोगों के नज़र में अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है, और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया, लोगों को लगा कि मैंने बड़े नाम बड़े फिल्म के साथ जुड़ गया हूँ, तो अगर आशुतोष जी ने विश्वास किया है तो इस बच्चे में कुछ ना कुछ होगा, तो मुझे सेकंड फिल्म मिल गई जो झंकार बीट्स थी, वो भी फिट हो गई।
1: झंकार बीट अपने आप में एक अलग फिल्म थी,
0: करेक्ट,
1: जिसमें खास तौर से राहुल देव बर्मन का जिक्र था।
0: आर डी बर्मन
1: साहब का, और अगर आप देखें तो राहुल देव बर्मन के हर एक गाने में आज भी वही कशिश है,
0: करेक्ट,
1: वही ताजगी है, जब उन गानों पर उस संगीत पर कुछ उसमें कुछ नयापन लाना और फिर उस पर डांस, वो एक अलग चैलेंज नहीं था आपके लिए?
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि धुन जो थी, जो विशाल शेखर पहली फिल्म थी उनकी और सुजॉय घोष की भी पहली फिल्म थी वो, सो तो धुन बनाते थे, इट वाज मतलब यू नो एक वेरिएशन था ऑफ आर डी बर्मन को लेकर और उसके संगीत को समझ कर, वो आज की तारीख में वैसा वाला संगीत बना रहे थे और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने बने उसी टेम्पलेट में, लेकिन एक नया ट्विस्ट देना था, एक नया अंदाज देना था आज की पीढ़ी जिसके साथ जो कनेक्ट कर पाए, तो वो इंस्ट्रक्शन भी सुजॉय ने दिया था कि मुझे थोड़ा पुराना वाला फ्लेवर चाहिए और थोड़ा आज का।
1: उसमें डांस में फिर क्या किया, मैं वही जानना चाहता हूँ।
0: तो डांस में इट वॉज नॉट सच अ डांस ओरिएंटेड सॉन्ग, इट वॉज मोर अबाउट, इट वॉज अ रॉक बैंड, तो वो बैंड है, फिल्म में भी वो लोग सब संगीतकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, तो उनको नाचना नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उनको फिल्माया गया था, एक रॉक स्टार वाली फील आनी थी, एक रॉक बैंड कैसे आते हैं, उनके बीच में कैसा छोटी छोटी अनबन होती है, और कैसे वो अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन रात को वो आके इन्हों गाते हैं और साथ में मिलते हैं, तो वो वाली कहानी थी। तो उस किरदार के हिसाब से मैं बन गया था, आई डेंट हैव मच ऑफ डांसिंग टू डू, बट पिक्चराइजेशन हैड टू बी डन वेल। एज अ कोरियोग्राफर समटाइम्स हर गाना आपको आर्टिस्ट को नचवाना नहीं पड़ता, सिचुएशन के हिसाब से आपको वो दर्शाया जाना चाहिए ताकि वो अच्छा लगे, देखने में फील करे और वो कैरेक्टर से बाहर ना निकले। ओनली ड्रीम सीक्वेंस जब रिया सेन और शायन मुंशी, वो एक्टर भी थे, उनका एक गाना था जो शान ने गाया था, दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी मुझको चुनो ना, चुनो ना, ला ला ला ला ला ला ला ला, बहुत अच्छा प्यारा गाना था। वो गाने में ड्रीम सीक्वेंस में थोड़ा डांसिंग दिखाया गया था, बट मोस्टली इट वॉज मोर ऑफ अ फील का गाना था।

एक्चुअल फिल्म में डांस एकदम कहर वाला डांस जो किया वो तीसरी फिल्म में आया नाच, जो अभिषेक बच्चन और अंधरा माली के साथ था और जो इसके डायरेक्टर साहब थे रामगोपाल वर्मा। वो फिल्म हाथ ऐसे आई कि अंतरा माली मेरे शोज देखती थी स्टेज में। मुझे तब भी, मैं फिल्मों में काम करता था लेकिन मुझे स्टेज का बहुत बड़ा लगाव था और मुझे स्टेज पर परफॉर्म

0: ना ज़्यादा पसंद था, तो मैं अतरंगी चीज़ें स्टेज पर ट्राई करता था, एकदम अतरंगी, जो मतलब एकदम लोग बोलते थे क्या कर रहा है तू स्टेज पे, बट कुछ भी जो भी दिमाग में आया करता था, लेकिन उसका कुछ सर या पैर नहीं था, बट एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, और मैं वो स्टेज पे दिखाता था। तो उसको वो स्टाइल बहुत पसंद आया, अंतर माली को, और उन्हें बोला कि मुझे आपका ये स्टाइल बहुत पसंद है और मैं ये सीखना चाहती हूँ और मैं इसको अपनी फिल्म में लेके आना चाहती हूँ। और एक फिल्म लिखी है जो मैंने लिखी है और राम गोपाल वर्मा ने लिखी है, उसका फिल्म का नाम है ना चापे, कोरियोग्राफर की लाइफ पर ये फिल्म है। और फिर मैंने धीरे धीरे समझा कि ये फिल्म तो मेरे ऑलमोस्ट मेरे से मिलती जुलती है, बिकॉज इट वॉज अ कोरियोग्राफर हु वॉज नॉट अ वेरी ट्रेडिशनल कोरियोग्राफर, जो हटके है, जो हटके सोचता है।
1: जी
0: तो उसने वो जो मेरा जो चाल चलन है, जिस तरीके से मैं बैठता था, वो मुझे नोटिस करने लगी अंतरमाली जी, और वो हर एक चीज़ समझने लगी कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, कैसे डांस करता हूँ, कैसे समझाता हूँ। तो वो सब चीज़ें उसने मुझे स्टडी कर दिया और वही चीज़ वो अपने फिल्म में नाच में करवाना चाहती थी। तो जो कंटेम्प्रेरी डांस का जो मैंने तड़का दिया उस गाने में, तो क्रिटिकली मुझे बहुत सारा लोगों ने फ़ोन किया कि ये फिल्म बहुत हटके है, तुमने कुछ और ही कर दिया है, कुछ अलग ही दिख रहा है, डांस नहीं पता नहीं क्या, कुछ एक अलग नज़ारा दिख रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्रिएटिवली मैंने कुछ अलग सोचा, मैंने बोला कि जो लोग करते हैं वो नहीं करूँगा मैं, कुछ अलग अलग अलग। तो उसके पीछे मैंने क्रिएटिवली कुछ अलग ही डांस करवाया और वो बहुत दिख कर आया और लोगों को पसंद आया। सो इन माई क्रिएटिव जर्नी आई हैव डन ओनली 10 फिल्म्स, नॉट मच, बट दिस इज़ वन ऑफ देम दैट काइंड ऑफ वो नो एक अलग एक पहचान मुझे इस फिल्म से मिली।

0: अच्छा, अभी आपने इसके पहले ये बात कही कि अंतरा माली ने आपको एक स्टेज शो में देखा और फिर और आपने ये बताया कि स्टेज शोज में बड़े अतरंगी से डांस आप करते थे, तो गाने भी अतरंगी चुनते होंगे?
1: बहुत ही।
0: किस तरह के? क्या क्योंकि अतरंगी गानों के लिए कुछ खास नाम भी हैं हमारे, जैसे किशोर कुमार साहब हैं, अमित कुमार जी के भी गाने रहे हैं, तो आपके अतरंगी गाने किस तरह के होते थे?
1: वेल, अगर हिंदी गाने तो यूज नहीं करते थे, बिकॉज वी यूज टू यूज यू नो नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं था, तो हम लोग म्यूजिक क्रिएट करते थे। लेकिन इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे थे जो मतलब यू नो देसी फिल्मों से थे। कुछ गाने बहुत ही यू नो दिल को करीब छूने वाले, जो एकदम सोलफुल थे, जैसे ए जिंदगी गले लगा ले, और मुझे गजल्स बहुत पसंद हुआ करते थे। गजल्स जैसे कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, क्योंकि मैं स्टेज पे ना मूड लेके चलता था।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो मेरी कहानियाँ होती थी, तो मुझे ऐसे वाले मूड वाले गाने बहुत पसंद हुआ करते थे, जहाँ पे एक मूड फील हो जाता है, जो बहुत ही संजीदा, जो बहुत ही जिसमें लिखावट में एक फीलिंग होती है। तो मुझे अर्थ के गाने, सदमा के गाने, या मासूम के गाने, या ऐसे फिल्मों के जहाँ पे बहुत ही मतलब बहुत खूबसूरती से लिखे हुए, जो बहुत ही यू नो सोच कर, या साहिर लुधियानवी के गाने, सभी मुझे पसंद थे। एक गाना था जो मैं जूझ रहा था लाइफ में, संसार से भागे फिरते हो,
0: चित्रलेखा,
1: चित्रलेखा, करेक्ट सर, मीना कुमारी। तो वो गाना मेरे लिए वॉज अ पिविटल मोमेंट, जब मैंने वो गाना सुना और जो जो उसका अर्थ था, क्योंकि मैं उसी मैं भी लाइफ में जूझ रहा था कि यू नो मटीरियलिज्म इज राइट ओके और इज इट कि सब कुछ त्याग देना, भोग में है या त्यागने में, तो क्या है। सो आई थिंक ऐसे गाने जब मैंने सुना करता था, माइंड की क्या सोच है, और उसको फिल्मों में दिखाया गया था। सो आई थिंक आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाई ऑल ऑफ दीज ग्रेट आर्टिस्ट एंड ग्रेट सॉन्ग्स एंड ग्रेट लिरिसिस्ट, क्योंकि जो म्यूजिक एक तरफ, लेकिन जो अच्छा लिखते हैं उस पर भी अमल करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कोरियोग्राफर, बिकॉज उससे कोरियोग्राफी बनती है। तो ये गाने मेरे लिए दिल के बहुत करीब रहे।

0: अभी आपने जो ये बातें की, गज़ल की बात की, लिरिक्स की बात की, आपने बात की कि कहीं कोरियोग्राफर्स उससे बनते हैं, ये एक सवाल मेरे मन में उठ रहा था कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली?
1: नहीं ली।
0: आपने कोरियोग्राफी की अगर बात की जाए तो फिल्मों में ऐसे कोई बहुत
1: असिस्ट भी नहीं,
0: फिल्में भी नहीं की या किसी को असिस्ट भी नहीं,
1: नहीं
0: किया। बावजूद इसके आप वो जो कोरियोग्राफी के लिए जो एक खास चीज होती है जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं, देखिए ऐसा एक डांस देख के डांस कर लेना एक अलग चीज है, लेकिन एक डांस को खुद क्रिएट करना, एक लिरिक्स को डांस में कन्वर्ट करना,
1: करेक्ट,
0: वो एक अलग चीज है जो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट कह सकते हैं इसको।
1: अंदर से आता है।
0: इसको आपने महसूस कैसे किया? आपने इसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है, देखिए गॉड गिफ्ट है, लेकिन वो गिफ्ट आप बाहर कैसे निकाल कर, आपने की जो प्रोसीजर है वो कैसे सीखी, उसको कैसे समझा आपने?
1: सो कोरियोग्राफी ना दो तरीके से होती है। आप गाने को सुनते हो और गाना आप पर हावी हो जाता है और आपका शरीर उस गाने को सुनकर, उसके कानों के ध्वनि को सुनकर आपका अंग डांस करने लगता है, वो एक तरीका है। लेकिन मैं दूसरा तरीका अप्लाई करता हूँ। मैं म्यूजिक लगाता ही नहीं हूँ, मैं जो थॉट है, जो सोच है, उसको लेके चलता हूँ और मेरे असिस्टेंट को बोलता हूँ कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन मुझे गौर से देखना और याद रखना और मुझे कॉपी करते रहना, क्योंकि मुझे आपको अगर बोलोगे कि अभी वही चीज़ वापस करो तो मुझे याद नहीं रहेगा। लेकिन जो भी निकल रहा है मेरे अंदर से उस पर थोड़ा आप ध्यान देना, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें नहीं। तब उतना ध्यान नहीं था कि कैमरा भी लगा सकते हो और आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उस ज़माने में मैं अपने असिस्टेंट पर ज़्यादा निर्भर करता था, तो मैं स्टूडियो में जाता था और मेरे अंदर से जो भी निकल रहा है वो मैं डांस करता था विदाउट म्यूज़िक। और फिर मैं सोच रहा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये कौन से म्यूज़िक पे अच्छा लगेगा। फिर मैं म्यूज़िक को सुनता था, मतलब कि ये म्यूज़िक मुझे इंस्पिरेशन दे रहा है। तो इट वाज़ ऑलवेज हाफ हाफ। पहले मैं आगे बढ़ता था, अपना कुछ करता था ताकि वो हावी ना हो जाए मुझ पर, और फिर मैं म्यूज़िक को सुनता था और फिर उसको कंबाइन करता था। फिर लव्स कभी कभी जो अल्फाज जो है अगर वो अच्छे हैं तो वो कभी कभी यू नो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कोरियोग्राफी में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली क्रिएटिव लोगों में, कि आप एक ही म्यूज़िक को सुन के 10 चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। इसके लिए आपको एक इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए आपको एक समझ चाहिए। वो समझ होता है, इट्स कॉल्ड एन आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस। क्योंकि आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारे रूप में इसको दिखा सकते हो, लेकिन कौन सा एकदम सही होगा, एकदम स्पष्ट होगा, एकदम सक्षम होगा और सूक्ष्म भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत चीज़ें आप कर सकते हैं, बहुत लिटरल भी कर सकते हो, मतलब जो आप लव्स बोला है वही को आप दिखा रहे हो, तो फिर वो नो जैसे आप डेफ एंड डम वाला डांस हो गया, फिर वो वाला नहीं होना चाहिए कि एकदम लिटरल आपको ट्रांसलेट कर रहे हो, तो उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। लेकिन क्या आप उसको एक मेटाफोरिक एक मेटाफोरिक रूप में अगर दे सकते हैं तो देन इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो यू हैव टू यूज योर आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप उसी एक म्यूजिक या गाने या शब्द को सही चीज़ों को जोड़कर उसको बहुत ब्यूटिफुली कन्वे कर सकते हो, और उसके लिए चाहिए आपको कॉम्पोजिशन टेक्निक। और कोरियोग्राफी कॉम्पोजिशन इज एन आर्ट, मतलब जो गाना जो आप डांस कर रहे हैं उसके उतार चढ़ाव क्या है। अगर आपकी बॉडी झट से एक स्ट्रांग मूवमेंट दे रही है, उसके बाद आप फिर से स्ट्रांग मूवमेंट मत कीजिए, एक थोड़ा सॉफ्ट मूवमेंट कीजिए ताकि वो एक लहर की तरह ऊपर नीचे चढ़े। अगर आप एक बहुत बड़ा वाला मूवमेंट कर रहे हैं उसके बाद एक छोटा वाला मूवमेंट कीजिए। अगर आप बहुत ही मतलब अगर आप एक बार मतलब 8 काउंट के लिए सामने होके कैमरा के सामने करें तो कई बार थोड़ा मुड़ के आप थोड़ा डांस की ताकि वो विजुअल थोड़ा बदले। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ विजुअल एंड हाउ यू आर यूजिंग स्पेस। जो स्पेस है आप किस तरीके से यूज करते हैं और आपका अंग किस डायरेक्शन में जा रहा है और वो क्या जो आप कर रहे हो वो मैच कर रहा है म्यूजिक और शब्दों के साथ, ये एक अलग साइंस है, ये एक अलग विधि है जानना कि कैसे करते हैं। और इट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ कॉम्पोजिशन। ये झट से नहीं आता, यू हैव टू वर्क ऑन इट। और फिर जाके आप बहुत ही जब प्रैक्टिस करते हो और बहुत दिमाग लगाते हैं, कई बार अंदर से आ जाता है और एक सेकंड में वो सही आ जाता है। कभी कभी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है और फिर उसको फनल करना पड़ता है, इसको एक एसेंस में मतलब इसको एक रिड्यूस करना पड़ता है,
0: छानना पड़ता है।
1: That's the word I was searching for. तो उसको छानना पड़ता है ताकि वो सही मात्रा में, ज़्यादा ना हो ना कम हो। इसकी जो समझ है ये बहुत फाइन इंटेलिजेंस है।

0: यही मैं चाहता था कि हमारे जो श्रोता है वो इस बात को समझें कि एक कोरियोग्राफी होती क्या है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपकी फिर अगली फिल्म कौन सी रही? जैसे कि आपने बताया 10 फिल्में रही।
1: हाँ, बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी फिल्में आई। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे 2009 में ही टीवी से इनविटेशन आया था कि मैं कोरियोग्राफर और जज बनूं, और मुझे ये जो इनविटेशन आया बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ जज नहीं करने वाला था लेकिन मैं कोरियोग्राफ भी करने वाला था, और मुझे मौका चाहिए था कि मैं ऐसे ऐसे डांसर्स के साथ काम करूं जो अब जीजा मेहनत करें और मुझसे कोई सवाल ना करे और जो मैं क्रिएटिवली दिखाना चाहता हूं वो मौका मिले। लिमिटेशन होती है, आर्टिस्ट कितना कर सकता है, एक दो कट कट कट करके शूट करना पड़ता है। तीसरी बात होती है कि गाना का अगर वो किरदार ऐसा है कि वो ज़्यादा नहीं नाचता तो तुम ज़बरदस्ती को नहीं नचवा सकते, और या सिचुएशन में आप यही कर सकते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों से बंध जाते हो। टेलीविजन शो में आपको आप डांस दिखाना है, सिर्फ डांस, लेकिन कहानियाँ भी दिखानी है क्योंकि कहानियाँ के माध्यम से अगर सिर्फ डांस हो तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर उसमें एक नैरेटिव हो, इसमें एक कहानी हो, इसमें एक इमोशन छुपा हो तो वो बहुत लोगों को पसंद आने लगता है। तो जब मुझे ये मौका मिला मैं बहुत खुश हो गया। बहुत कोरियोग्राफर्स ने डांस इंडिया डांस को रिजेक्ट किया था, इनफैक्ट हम पहले चॉइस नहीं थे फॉर एज कोरियोग्राफर्स, बड़े

0: इन लोगों को लिया गया था पहले, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमसे बहुत सीनियर जो लोग थे उनको अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने ना कर दिया क्योंकि उनको कोरियोग्राफ करना नहीं था, क्योंकि वो फिल्मों में कोरियोग्राफ अच्छा करते हैं, लेकिन स्टेज को कोरियोग्राफ करना मतलब स्टूडेंट्स को एक झटके में विदाउट कट्स, वो एक अलग ही विधि है।
1: टेरेंस, मैं उस पूरी जो टीवी की दुनिया है उसमें हम जाएंगे
0: जरूर,
1: लेकिन उससे पहले कुछ गाने भी सुनते चलेंगे।
0: बाहों में चल

0: मैं एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपने बातचीत के दौरान कहा कि फिल्मों में जो कोरियोग्राफी होती है, जो डांस होता है, वो कट कट करके होता है।
1: करेक्ट।
0: मान लीजिए कि हम एक एक्टर को जानते हैं कि भाई इसको डांस आता नहीं, लेकिन वो बराबर 7 मिनट तक या 6 मिनट तक पर्दे पर डांस करता हुआ नजर आता है। आप थोड़ा सा समझाएंगे कि एक्चुअली जो फिल्मी कोरियोग्राफी होती है, फिल्मी डांस जब शूट होता है, तो उसका जो प्रोसीजर होता है, उसकी जो टेक्निक होती है, वो किस तरह से कट कट करके जाती है।
1: तो देख लीजिए, समझ लीजिए, आपने एक गाना सुन रहे हैं। गाने में बीट्स होती हैं, ओके। एक एक ताल होता है, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, वो बीट होता है, रिदम होता है, ताल होता है। जब हम लोग सेट करते हैं, तो हम हर बीट को कोरियोग्राफ करना पड़ता है, चाहे वो एकदम शुरू में

0: अगर सिर्फ फ्लूट बज रहा है तो वो भी हमारे लिए कोरियोग्राफी होनी चाहिए, क्या हो रहा है उस पर वो भी सेट करना पड़ता है। तो जब हम शूट करते हैं तो हम पिक्चराइज करते हैं कि ये चार बीट पे हम ये वाला स्टेप करेंगे। अब ये है कि चाहे आर्टिस्ट अच्छा डांस करे या ना करें, लेकिन जो फिल्म का जो माध्यम है उसमें हम बहुत ग्लैमराइज करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक एंगल से चार काउंट लिया, दूसरे एंगल से क्लोजअप मारा वही चीज़, फिर तीसरे एंगल से मूविंग ट्रॉली शॉट लगा दिया। तो जनरली क्या होता है, आर्टिस्ट को सहूलियत मिल जाती है या कन्वीनियंस हो जाता है कि वो सिर्फ चार स्टेप करें या आठ स्टेप करें और फिर उसके बाद वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उसके बाद कट लगने वाला है, क्योंकि एक दूसरा कट आएगा। मान लो कि आपने 16 काउंट का भी कोरियोग्राफी रख दिया, अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूँगा हमारे अभी जो प्रथा चली आ रही है 20 साल से कि हम बहुत ही हमारे पास ठहराव नहीं है, हमको सब कुछ ना अच्छा दो काउंट ऐसा आ गया, आर्टिस्ट ने पूरा शॉट दिया है डांस का, लेकिन नहीं नहीं नहीं ये नहीं जम रहा है, अभी थोड़ा कट करके ये लगाएंगे, अब कट करके वो एंगल लगाएंगे। लेकिन एक आर्टिस्ट अगर अच्छा आर्टिस्ट हो, जैसे माधुरी जी हो या ऋतिक हो या गोविंदा जी हो, उनको आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं कि वो एक एंगल से भी बनता है वो शॉट, ज़रूरी नहीं। लेकिन नहीं, आज की पीढ़ी में सब फट फट फट फट फट, तो एडिटर ज़्यादा नाचता है क्योंकि जबरदस्ती के फट फट कट, और फिर वो झामे जो होते हैं, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन वो ना वो एकदम जूम इन करके झामे झक झक, फिर वो ब्लो ड्रायर, अननेसेसरी ब्लो ड्रायर, हर गाना सेम टू सेम लगने लगता है। अच्छा काम भी हो रहा है इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यही ज़रूर कहूँगा कि एक मोनोटोनस चीज़ें होने लगती है। अगर वो एक चीज़ अच्छी भी है तो वही चीज़ को, अच्छी चीज़ को 30 गाने में आप देख सकते हैं कि वो सेम टू सेम वही फॉर्मेट वही चीज़ दिख रही है, इनोवेशन नहीं होता। अगर एक चीज़ सक्सेस हो जाती है हमारी इंडस्ट्री में तो फिर सभी लोग बोलते हैं कि अच्छा वैसा ही गाना करो और इसको भी डुप्लीकेट बनाओ, सिर्फ गाने के लव्स और आर्टिस्ट बदल रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट वही का वही है। सो वही ट्रीटमेंट है कि गाने को फट फट काटो, फिर यू नो झामे करो, फिर क्लोजअप लो, फिर स्टडी कैम लगाओ। लाइक आई फील मास्टर जी, जैसे गणेश मास्टर जी और दूसरे हैं मास्टर जी जो यू नो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, सरोज जी, उनका जो स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट था, लंबे लंबे कट्स, आई थिंक दैट वो सिनेमा वापस आना चाहिए। एंड कुछ कोरियोग्राफर्स कर रहे हैं कुछ हद तक, और आर्टिस्ट को भी पता चल गया है कि नाउ वी शुड ऑल्सो नॉट कीप सच शॉर्ट कट्स। तो फिल्म की बात करें तो बहुत लोग जो अच्छे डांसर नहीं हैं उनको भी हम अच्छा दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज गलत है ओके, तो मैं सिर्फ आपका क्लोजअप ले लूँगा, मैं आपको बोलूँगा कि आप आंखों से खेल लीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सही नहीं है, आप बहुत ही ऑड लग रही हैं। कुछ कुछ हैं एक्ट्रेस जिनको डांस नहीं आता और वो मॉडल्स हैं, लंबी हैं, उन्होंने कभी सीखा नहीं है लेकिन अभी उनको करना पड़ रहा है, तो वो ज़बरदस्ती करते हैं, वो सीख लेते हैं, लगता है वो बहुत स्ट्रेस में डांस कर रहे हैं, वो मज़े नहीं ले रहे हैं। कुछ कुछ हैं, ज़्यादा नहीं है, आजकल के सभी जो पीढ़ी के जो आर्टिस्ट हैं वो सब ना सीख कर आते हैं, बट कुछ दो तीन ऐसे रहे हैं मेरे लाइफ में भी कि मुझे लगा कि उनका फुल बॉडी शॉट नहीं लूँगा, और अगर लूँगा तो वाइड लूँगा भर भर के डांसर, ताकि वो जो गलतियाँ हैं छिप जाएँ, और उनको सिर्फ चार या पाँच या आठ काउंट का डांस सिखा के बंद करा दूँगा, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होने लगती है या वो याद करने लगता है कि नेक्स्ट क्या है और वो चेहरे पे दिखने लगता है। तो इसलिए हम लोग कट कट करके लेते हैं, लेकिन ऑडियंस को पता नहीं चलता है कि ये कटा हुआ है, उनको लगता है कि ये लगातार निरंतर रूप से चला आ रहा है।
1: तो दोस्तों आप समझ गए, ये जो कट कट की दुनिया है किस तरह से आपके सामने बट बट के आती है। बहरहाल ये एक चीज़ बहुत टेक्निकल थी। ध्यान से जो श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, जाहिर सी बात है जिनका डांस से बहुत लगाव होगा उन्होंने बड़े ध्यान से इसे सुना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपकी उस दुनिया में आते हैं जो आजकल आपको घेरे हुए, या ये कह लें कि जिस दुनिया में आजकल आप मदमस्त हैं अपने नशे में, टीवी की दुनिया। तो ये टीवी की दुनिया में अब जहाँ तक मुझे ध्यान आता है कि मैं भी काफ़ी समय से देख रहा हूँ, मुझे लगता है जब से शुरू हुई है ये दुनिया, रियलिटी शोज़ का ज़माना जब से शुरू हुआ है, चाहे वो डांसिंग शो हो या सिंगिंग शोज़ हो, गाने तो विविध भारती के ही बजते हैं।
0: करेक्ट, बहुत सारे गाने, एक जो अभी जिसके एटलीस्ट 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, वो गाना भी पुराना गाना है।
1: हाँ।
0: जो मैंने नौरा के साथ किया वो ज़्यादा हिट हुआ है। बहरहाल मतलब अभी जब हम बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं।
1: कौन सा?
0: भीगी भीगी रातों में ऐसी बरसातों में कैसा लगता है, वो वाला गाना
1: अजनबी।
0: हाँ अजनबी, वही गाना लेकिन मॉडर्न स्टाइल में, आज की तारीख में

0: आप बात कर रहे थे कुछ ऐसे डांसर्स की कि जिनकी बॉडी लैंग्वेज में डांस नहीं होता,
1: करेक्ट,
0: लेकिन फेस पे आंखों से खेल जाते हैं, लेकिन आपकी नजर में कौन सी हीरोइन बहुत अच्छी डांसर है?
1: आज के जमाने में जो बहुत अच्छे हैं, मैं जरूर कहूंगा कि माधुरी जी बहुत अच्छा करती है। आजकल के तारीख में आज की जो नई पीढ़ी है सभी अच्छा डांस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, वो इंजॉय नहीं करते हैं। अगर आप देखेंगे माधुरी और गोविंदा जी ना, जब वो कोरियोग्राफी सीखते भी है ना, तो वो अपना एक एलिमेंट लेके आते हैं, उनको खुद को इतनी खुशी महसूस हो रही है और वो खुशी दिखती है। दूसरे लोगों में लगता है कि नहीं, हमें उसको एक परफेक्ट बनाना है, तो वो परफेक्शन के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि वो एंजॉय भी करना है।
0: परफेक्शन के चक्कर में वो रोबोट हो जाते हैं।
1: हाँ, तो वो मेरे बाल ऐसे हैं, अच्छा मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, अच्छा ये पोस्चर सही है, हाँ क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, या मैं सुंदर लग रहा हूँ, या मेरा एटीट्यूड सही है, कि मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं। ऑल्सो दे आर टू ट्रैप्ड इन दैट यू नो कि परफेक्शन, तो कहीं ना कहीं दे डोंट रियलाइज कि एक मेटाफिजिकल चीज होती है एनर्जी एंड वाइब। आकार ओके इज अ फिक्स्ड रूप, फिजिकल रूप है, लेकिन एक चीज़ है एनर्जी और वाइब, वो फिजिकल नहीं होती, वो मेटाफिजिकल होती है, वो लोग भाप लेते हैं। तो लोग जब आप देखते हैं, हाँ रूप तो देख लेते हैं, लेकिन इसकी जो वाइब है ना वो नहीं आ रही,
0: आत्मा नहीं पकड़
1: सुंदर है लेकिन आत्मा नहीं, मतलब सब ठीक है, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो वाइब नहीं आ रही है, क्योंकि वो इंसान ने उसको अपना नहीं बनाया। एंड दैट इज वन थिंग दैट माधुरी जी एंड

0: दूसरे रितिक शाहिद ऑल वेरी गुड डांसर्स. रणवीर ऑल्सो इज वेरी गुड डांसर और बहुत मेहनत भी करते हैं. तो इट्स नाइस टू सी द यंग डांसर्स. इट्स जस्ट दैट 19-20 का फर्क है लेकिन वो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है.
1: सही कह रहे हैं.
0: हाँ, दूसरे एक जमाना हुआ करते, अगर आप पूछना चाहते हैं कि कौन अच्छे डांसर नहीं हुआ करते थे, कैसे कोरियोग्राफर्स छुपाते थे, द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉट बीइंग अ गुड डांसर इज मीना कुमारी जी. शी वॉज नॉट अ ग्रेट डांसर लेकिन उनके फिल्मों में, पाकिजा में, उनको नाचना है. तो कई गानों में ना उनकी एक डबल हुआ करती थी. कल्पना अय्यर जी ने बहुत सारे टाइम उनका डबल, यू नो, डबल के रूप में घूंघट में अगर वो गाना देखा है, वो कल्पना अय्यर जी ने किया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. दैट इज वन. मीना कुमार जी का एक खास बात थी कि जो ये शरीर नहीं कर पाता था,
1: फेस करता,
0: ये कर पाता था. तो अगर आप शॉट्स देखेंगे ना, तो वो सिर्फ आंखों से खेल रही हैं और वो आंखों से बहुत कुछ कह जाती हैं. उनको सिर्फ एक इतने शोल्डर से और ये आंखों को देखने में और वो फीलिंग के साथ जो कर रही है ना, उसी में पैसा है. उसको ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है. तो उन्होंने समझ लिया कि ये मेरी शॉर्टकमिंग से. इवन विथ रेखा, शी यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड. रेखा इज नॉट अ ब्रिलियंट डांसर. उमराव जो हमें बहुत नचवाया है, लेकिन इफ यू सी इन कंपैरिजन, वैजयंती माला इज नेक्स्ट लेवल. हेमा मालिनी जी इज नेक्स्ट लेवल. और ये साउथ की एक्ट्रेसेस है ना, उनके संस्कृति में ये है कि पहले डांस सीखो. और पेरेंट्स जबरदस्ती लड़कियों को और लड़कियों को सिखाते थे. कमल हसन भी जी सबसे बढ़िया डांसर थे, उन्होंने भी भरतनाट्यम सीखा था. तो जो साउथ के जो हीरोज या हीरोइंस थे, उनको ऑलरेडी वो सीख कर आया करते थे. तो उनको समझ थी. सो द बेस्ट एग्जाम्पल इज, आई वुड से, इज वैजयंती माला जी, श्रीदेवी जी, हेमा मालिनी जी. वहीदा मेहमान इज नॉट फ्रॉम द साउथ, बट शी वॉज, आई वुड से, ये चार ऐसे कलाकार थे.
1: एक और नाम है पद्मिनी.
0: पद्मिनी वो इसकी बहन थी ना, वैजयंती माला की बहन थी ना वो पद्मिनी. सो दे वर बोथ क्लासिकली ट्रेन्ड. साउथ की थी वो, सो दे वर वेरी क्लासिकली ट्रेन्ड. और वो जब साउथ से आई थी वैजयंती माला, वो अपने कोरियोग्राफर को लेकर आई थी कि अगर मैं डांस करूंगी तो इनके साथ करूंगी. तो इट वॉज वेरी क्लियर कि मैं, मेरी पहचान डांस है, तो मैं अपने टीम को ही लेकर आऊंगी.

दोस्तों, आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत बस कुछ ही पलों के बाद।

0: छाया गीत में आप सभी का स्वागत है। ये दुनिया ही अजीब है, यहाँ कोई प्यार मांगता है तो उसे मिलती है झिड़की। उस पर आलम ये है कि एक मुस्कान को भी लोग प्यार समझ बैठते हैं और संजोने लगते हैं ढेर सारे एहसास। मौका मिलते ही चल पड़ते हैं इन भावनाओं का बोरिया बिस्तर बांधकर अपनी मंजिल की ओर। पर कहते हैं ना, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। एक ना एक दिन असलियत सामने आ ही जाती है और होता है कुछ ऐसा हाल।
1: लो जी बुझ गई बिजली प्यार की, हुआ खत्म फसाना दिल वाला, हुआ खत्म फसाना दिल वाला, जिसे डस गई, जिसे डस गई।

0: एक बार जो दिल टूट जाता है तो गिनी जाती हैं अपनी कमियां। 100 नुक्स खुद में निकाले जाते हैं तो 100 इल्ज़ाम दिए जाते हैं हालातों को। यूं होता तो ऐसा ना होता, यूं ना होता तो ऐसा होता। पर क्या इन कमियों को गिनकर कभी गुजरा वक्त और बिगड़े हालात सुधरते हैं भला? लेकिन करें क्या, मन तो यही सोचता रहता है कि शायद यूं होता तो यूं ना होता।
1: हारमोनियम बजाया, तबला बजाया, ये भी बजाया और वो भी बजाया, मगर अफसोस
2: गाना न आया, बजाना न आया।

की सड़क टेढ़ी है देसी राग की ई ई ई ई चल मोड़ ले टमटम गले को गर्म कर ले गले को गर्म कर ले छोड़ अंग्रेजी में एक एटम हाँ अंग्रेजी में एक एटम हाँ अंग्रेजी में एक एटम दादरा।

इसके इशारे पर नाचता रहता है। लाख कोशिशें की जाती हैं कि दिल और दिमाग की दुश्मनी करवा दी जाए, न ये बहकाएगा और ना ही डोलेगा मन, वरना इस दिल का क्या भरोसा, पता नहीं कब कहाँ कौन सी मुसीबत खड़ी कर दे।

छाया गीत में आप सुन रहे हैं दिल और दिमाग का सुरताल। लो जी, लाख समझा लो पर मन को तो करनी है अपनी ही। अब देखिए ना, आ पहुंचा है किसी के पीछे पीछे इतनी दूर, और उस पर ये दिल मन को बहका रहा है कि कुछ बदमाशी तो की जाए। अब इन दोनों बदमाशों के चक्कर में लेने के देने ना पड़ जाएं। जाने कौन सा सुर साध रहे हैं और कौन सा राग चल रहा है इनका।

जहाँ दिल और दिमाग अपने सुर और ताल मिला लें, वहाँ समझो इंसान का बंटाधार है। उस पर जो नजर आए कोई खूबसूरत चेहरा, तो मानो हम गए काम से। डरते डरते भी आ पहुँचे हैं उनके पीछे, लेकिन वो भाई वो तो वो हैं, क्या कहने।

बहकी निगाहें माशा अल्लाह माशा अल्लाह, बाकी अदाएं माशा अल्लाह माशा अल्लाह, पलकों की उठती गिरती चिलमन तीर चलाए माशा अल्लाह, दिल का करार हो तुम जाने बहार हो तुम, करने को आए हैं नजारे हम बेचारे प्यार के मारे, और तुम तो तुम हो वाहरे वाहरे, नो डरते।

चाल तुम्हारी सबसे आला, ला ला ला ला। बात तुम्हारी रस का प्याला, अपना तो हाल कुछ ना पूछो, कैद हुआ है चाहने वाला, जुल्फों के जाल में हम, तेरे ख्याल में हम, उलझे हैं अरमां हमारे, हम बेचारे प्यार के मारे, और तुम तो तुम हो बहरे बहरे, तो डरते डरते

0: दिल और दिमाग की ये तिकड़म कभी कभी काम भी कर जाती है। जी हाँ, भले ही सामने हमसे बातें ना की हों, लेकिन खिड़की से वो भी झांकते हैं चुपके चुपके। तो क्या उधर भी चल रही है दिल और दिमाग की सरगम? क्या वहाँ भी हो रही है वही तिकड़म? अब ये बात जाने भी तो कैसे। हाँ, एक रास्ता है
1: वो झरोके से जो

सब भूल चुका हूँ। यहाँ खड़ा अब मैं यही सोच रहा हूँ कि झरोखे से जो छाके तो इतना पूछूं मैं रुकूं या चल।

0: प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की एक नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरे सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। देश भर में इस तरह के 1,600 केंद्र स्थापित किए जाने हैं और अब तक 24 केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इन केंद्रों में अभी तक लगभग 10 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्चा कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला में जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में 1 विकेट पर 16 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है भारतीय देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग। सिर्फ तुम फिल्म का ये गाना है समीर का रचा हुआ, अनुराधा पौडवाल और हरिहरन की आवाजों में, संगीतकार नदीम श्रवण।

अमित खन्ना के संगीत निर्देशन में, राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया मनपसंद फिल्म का ये गीत है। गीतकार अमित खन्ना।

पुराने नए पुराने कार्यक्रम में आइए, अब आपको सुनवाते हैं श्रोताओं कोयला फिल्म का गाना। रचना इंदिवर की है, संगीत राजेश रोशन का, गायक स्वर कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों के।

आशा भोसले के स्वर में। ये थी अहमद वसी की रचना प्राण जाए पर वचन न जाए, इस फिल्म से संगीतकार ओपी नैयर। और इसी के साथ आज का तराने नए पुराने कार्यक्रम समाप्त होता है।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से हम बोल रहे हैं। झरोखा, आइए श्रोताओं आपको जानकारी दे दें आज के शेष कार्यक्रम और कल दिन भर में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। आज शाम 7 बजे विशेष जयमाला कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसे प्रस्तुत किया है फिल्म निर्देशक लेखिका नाटककार सई परांजपे ने। इंद्रधनुष के अंतर्गत 7:45 पर सुनिए कार्यक्रम जिज्ञासा। रात 8 बजे हवा महल में

सुनो कहानी, इसके अंतर्गत सुनिए स्वामिनी, इस कहानी का दूसरा भाग। मुंशी प्रेमचंद की लिखी ये कहानी है जिसका वाचन किया है ममता सिंह ने। प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:15 पर। 9 बजे सुनिए आपके लिए। संगीतकार वसंत देसाई पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम आप सुन पाएंगे रात 9:30 पर। रात 10 बजे सुनना न भूलिए छाया गीत।

कल सुबह 6:05 पर भक्ति रचनाओं पर आधारित हमारा कार्यक्रम प्रसारित होता है वंदन वार। उसके पश्चात 6:45 पर आप 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में गजदत्त वाद्य इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी सुनिए। आमंत्रित कलाकार डॉक्टर प्रकाश महाड़िक। यही कार्यक्रम शाम 6:45 पर दोबारा सुना जा सकता है। भूले बिसरे गीत आपको सुनवाएंगे सुबह 7:00। 7:30 पर सुनिए हम है राही प्यार के। त्रिवेणी का प्रसारण होगा सुबह 8:15 पर। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक। 9:30 पर प्रसारित इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अभिनेता भारत भूषण पर केंद्रित कार्यक्रम। इसका पुनः प्रसारण 9:30 पर किया जाएगा। निर्देशक राज खोसला पर आधारित है कल का विविधा कार्यक्रम। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान का। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। प्रसारण समय कल दिन में 11:00। यादों की महफिल। ये कार्यक्रम प्रसारित होगा 12:05 पर। दोपहर 1:00 सुनिए सुरीला सफर। और 2:30 पर आपको सुनवाएंगे सदाबहार नगमे। दोपहर 3:00 आप सुनेंगे मन चाहे गीत। 3:30 पर नाट्य तरंग। इस कार्यक्रम में अभिशप्त गांधार नाटक का दूसरा भाग सुनिए। लेखक डॉक्टर शंकर शेष। निर्देशक सुदर्शन कुमार। दोपहर बाद 4:00 उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में सुनिए कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की लंबी बातचीत का तीसरा भाग। तराने नए पुराने कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे शाम 5:30 पर। सैनिकों की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम में कल शाम 7:00 सुनिए महावीर चक्र से सम्मानित दीवान रंजीत राय लेफ्टिनेंट कर्नल की शौर्य गाथा। हवा महल। इस कार्यक्रम में रात 8:00 नाटिका आपको सुनवाएंगे कागज के जेवर। लेखक अभिलाष। निर्देशक पुरुषोत्तम दारव्हेकर। चित्रलोक का प्रसारण रात 8:15 पर होगा। आपके लिए आप सुनेंगे रात 9:00। और छाया गीत का प्रसारण रात 10:00। झरोखा में अभी आप सुन रहे थे आज के शेष कार्यक्रम और कल दिन भर में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या रंजन।

चित्रगुप्त के संगीत रचना आप सुन रहे थे गंगा की लहरें फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में, शब्दकार मजरू सुल्तानपुरी। और अब हम दोनों फिल्म से, यह है साहिल लुधियानवी की रचना, गायक स्वर लता मंगेशकर का, संगीतकार जयदेव।

0: इस रचना के साथ ही संध्या रंजन कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: गजतत वाद्य प्रस्तुत है गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अगली कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: श्रोताओं, कल हमने वायलिन के इतिहास पर चर्चा की थी और भारत में इसके प्रचलन पर विचार किया था। आज हम वायलिन की रचना और उसकी वादन तकनीक पर चर्चा करेंगे। वायलिन की रचना विभिन्न भागों को जोड़कर की जाती है, इस कारण इसके अलग अलग भाग पर चिंतन कर उसमें सुधार का प्रयत्न हर समय किया जाता रहा है। बैक, बेली और रिब्स मिलाकर इसको विशेष आकार दिया जाता है। इसके अंदर निश्चित स्थान पर बेस बार और साउंड पोस्ट लगाए जाते हैं। नेक के ऊपर फिंगर बोर्ड लगाया जाता है। तार लगाने के लिए टेलपीस में लगे एडजस्टर और पेक बॉक्स का उपयोग करते हैं। ब्रिज और नट पर तार रखते हैं। ब्रिज साउंड होल्स के मध्य एक निश्चित स्थान पर रखते हैं। इस प्रकार वायलिन का ढांचा तैयार होता है। इसके अतिरिक्त इसके अवयवों के नाम इस प्रकार हैं: परफ्लिंग, लाइन स्ट्रिप, स्क्रोल, चिन रेस्ट आदि। वायलिन के गज अर्थात बो को मुख्य पांच भागों में विभाजित किया जाता है: स्टिक, हेयर, पॉइंट, फॉग और बो स्क्रू। गज का आकार किस प्रकार का होना चाहिए, इसका गहनता से अध्ययन श्री टॉर्ट द्वारा किया जा चुका है। उनके द्वारा निर्मित बो के मानक आज भी सर्वोत्तम माने जाते हैं। सामान्यतः इसमें चार तार प्रयुक्त होते हैं, किंतु पांच तार युक्त वायलिन का प्रयोग भी प्रचार में आ गया है। प्रोफेसर शिशिर कणाधर चौधरी, प्रोफेसर वीसी रानड़े आदि कलाकार पांच तार युक्त वायलिन ही प्रयोग करते हैं। वायलिन में तरबे लगाने का प्रयोग भी अनेक कलाकारों द्वारा किया गया है। पंडित वीजी जोग पांच तार युक्त तरबदार वायलिन से ही अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। पाश्चात्य देशों में वायलिन खड़ा रहकर अथवा कुर्सी पर बैठकर बजाया जाता है, किंतु हम भारतीय सामान्यतः इसे नीचे बैठकर बजाते हैं। इस प्रकार नीचे बैठने से हमें कुष्ट ढंग से बजाने में सुविधा होती है। इसका मनोवैज्ञानिक कारण यह भी है कि भारतीय परंपरा अनुसार गायन वादन बैठकर ही किया जाता है। दाहिने हाथ से विशेष प्रकार से गज पकड़कर गज का संचालन आवश्यकता अनुसार तारों पर किया जाता है। बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा उंगली से विभिन्न स्वरों की उत्पत्ति की जाती है। यह उल्लेखनीय है कि वायलिन वाद्य पर गायकी और तंत्रकारी दोनों ही शैलियों को उत्तम प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। वायलिन के तारों को मिलाने की मुख्य चार पद्धतियां प्रचलित है। प्रथम विधि GDAE अर्थात परे धग, इसे हम मसा परे भी कह सकते हैं, अर्थात इसके तार मंद्र मध्यम, मंद्र षड्ज, मध्य पंचम और तार सप्तक के ऋषभ स्वरों में मिलाकर बजाए जाते हैं। पाश्चात्य देशों में वायलिन इसी प्रकार मिलाकर वादन करते हैं। हमारे यहाँ चित्रपट संगीत में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तार मिलाने की दूसरी पद्धति है मंद्र षड्ज, मंद्र पंचम, मध्य षड्ज और मध्य पंचम अर्थात साप साप। कर्नाटक संगीत के कलाकार इसी पद्धति का प्रयोग करते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में भी कुछ कलाकार इस पद्धति से मिलाकर वादन करते हैं, जैसे डॉक्टर एन राजम और श्री डी के दातार आदि। तो आइए हम इसी पद्धति से बजाया गया डॉक्टर एन राजम का राग यमन सुनते हैं।

वायलिन मिलाने की तीसरी पद्धति है प सा प सा, अर्थात इसके तार मंद्र पंचम, मध्य षड्ज, मध्य पंचम और तार षड्ज के स्वर में मिलाए जाते हैं। इस पद्धति से मिलाकर बजाने वाले प्रमुख कलाकार पंडित वीजी जोग हैं। इसी पद्धति में मंद्र पंचम को मंद्र मध्यम में मिलाकर चौथी विधि बनाई गई है, अर्थात इसके तार म सा प सा में मिलाकर बजाते हैं। स्वर्गीय केशवराव सुरुंगे इसी पद्धति से मिलाकर वायलिन वादन किया करते थे। पसा पसा पद्धति से बजाया गया राग श्याम कल्याण अब हम सुनते हैं। कलाकार है पंडित वी जी जोग।

गज तत्ववाद्य, गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये कड़ी अभी आपने सुनी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: शेतकरी बंधूंनो, आत्ताच आपण आपत्कालीन पीक व्यवस्थापन याविषयी कृषी विज्ञान केंद्र धुळे येथील वरिष्ठ शास्त्रज्ञ आणि प्रमुख डॉक्टर दिनेश नांद्रे यांची वैशाली गिरासे यांनी घेतलेली मुलाखत ऐकली. या कार्यक्रमाचे सादरकर्ते होते सुमित सूर्यवंशी.
1: इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का.
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुन रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी. पहली वाली बात कहाँ,
2: परम तो सभी डाले हैं.
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं.
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं.
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा.
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती.
0: शेतकरी बंधूंनो, पुन्हा भेटूयात पुढील किसानवाणी या कार्यक्रमात. तोपर्यंत नमस्कार. शेतकरी बंधूंनो, किसानवाणी या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत कृषी आणि कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार.

के श्रेया घोषाल, कविता सुब्रमण्यम और साथियों की आवाजों में कार्यक्रम का ये पहला गीत देवदास फिल्म से, नुसरत बद्र के बोल इस्माइल दरबार का संगीत।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

अलका याग्निक, सोनू निगम, साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे चलो इश्क लड़ाएं। इस फिल्म का गीत समीर का रचा हुआ, संगीत हिमेश रेशमिया का था। चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। प्रवीण भारद्वाज का लिखा ये गीत अभिजीत, अलका याग्निक, अयूब, सुरजीत और डब्बू मलिक की आवाजों में।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

और आज के चित्रलोक कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं गुलजार का लिखा हुतुतू फिल्म का गाना, संगीत विशाल का है, आवाजें लता मंगेशकर हरिहरन और साथियों की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक

0: रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा

0: कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूं।
1: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने परीक्षा अधिकारियों के लिए IGOT कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य NTA परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पैन और

पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अल नीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में ओडिशा और दक्षिण

0: इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अल नीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमान उल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए।

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में 10 नंबरी फिल्म का ये गीत था, मजरू सुल्तानपुरी के बहू लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आपके लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। इस कार्यक्रम का यह अगला गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में है, शब्दकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन, फिल्म डार्लिंग डार्लिंग।

सावन कुमार के बोल, उषा खन्ना का संगीत, अब क्या होगा इस फिल्म से। ये गीत सुनिए, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों का गाया हुआ है।

आइए अब आपको सुनवाते हैं आरंभ फिल्म का गाना, शकील अहमद का लिखा हुआ। संगीत आनंद शंकर का है, गायक स्वर मुकेश और आरती मुखर्जी के।

0: और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं चरस फिल्म का गाना, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।
1: गुड नाइट।
2: हाँ, गुड नाइट।
1: हाँ, गुड नाइट।
2: अच्छा, गुड नाइट।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

पेश प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अपने जमाने के सुप्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई पर।

वसंत देसाई का जन्म महाराष्ट्र के जिला सावंतवाड़ी के गांव सोनावड़े में 1912 में हुआ। उनका बचपन सिंधुदुर्ग जिले के कस्बा कुडाल में बीता, जो कि महाराष्ट्र के कोंकण का जाना माना प्रदेश है। यहां वो अपने मामा के पास पढ़ाई लिखाई के हेतु भेजे गए थे। महाराष्ट्र के इस कोंकण प्रदेश में दशावतारी नाटकों का चलन प्राचीन काल से ही है। इसका प्रभाव वसंत देसाई के बाल मानस पर पड़ना लाजमी था। अनेक नाटकों में वे बतौर अभिनेता और गायक भाग लेने लगे थे। 1929 में अगली पढ़ाई के लिए वे कोल्हापुर पहुंचे। वहां पर इनका परिचय हुआ मराठी और हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ फिल्मकार चित्रपति शांताराम राजाराम वनकुदुरे, जी हां वी शांताराम जी से, जो प्रभात फिल्म कंपनी के सह संस्थापक थे।

वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी में काम करने लगे थे। ये बात सन 1930 के आसपास की है, जब वसंत देसाई ने फिल्म खूनी खंजर में अदाकारी भी की थी। ये एक मूक फिल्म थी दोस्तों। वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी की ही जगह में रहा करते। दिन भर काम करने के बाद रात्रि विश्राम से पहले वो श्रम परिहार हेतु हारमोनियम बजाया करते। एक बार वी शांताराम जी के कानों पर जब ये आवाज पड़ी तो वो चकित हुए और फिर उन्होंने संगीत विभाग में बतौर असिस्टेंट के रूप में वसंत देसाई को भेज दिया। महान संगीतकार गोविंद राव टेंबे के संगीत निर्देशन में प्रभात फिल्म कंपनी ने जो पहली बोलती फिल्म बनाई अयोध्या राजा, उसके वो सहायक संगीत निर्देशक थे। ये फिल्म हिंदी में अयोध्या का राजा नाम से बनी थी। जैसा कि वी शांताराम जी हमेशा किया करते थे, जो भी फिल्म मराठी में बनाते उसका हिंदी संस्करण भी हुआ करता। इस दौर के दिग्गज संगीतकार केशवराव भोले और मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर, इनके भी वसंत देसाई सहायक रहे थे। वी शांताराम की बतौर निर्देशक जो पहली फिल्म थी उसका नाम था पड़ोसी, और मराठी में जो शेजारी नाम से बनी थी, इसके संगीतकार थे मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर। आगे बढ़ते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म के इस प्यारे से गाने के साथ।

वसंत देसाई 1936 के आसपास मुंबई आ गए थे। यहाँ उन्होंने आंध्रयन चिशाड़ा, जो कि एसबी वर्तक लिखित नाटक था, इसका संगीत दिया था। एक और मराठी नाटक छाया को भी उन्होंने संगीत दिया था। वसंत देसाई को बतौर संगीतकार हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक मिला जेबीएच वाडिया की फिल्म शोभा में, साल था 1942। उन्हें सही मायनों में ख्याति प्राप्त हुई इसी साल यानी 1942 में आई फिल्म शकुंतला से। हुआ यूं कि वी शांताराम ने अक्टूबर 1942 में अपनी एक अलग फिल्म कंपनी बनाई, राजकमल स्टूडियोज। इसके बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म थी शकुंतला। शकुंतला का मुख्य किरदार किया था वी शांताराम की पत्नी जयश्री ने, चंद्रमोहन थे दुष्यंत और स्वयं वी शांताराम जी ने प्रियमवध की भूमिका निभाई थी। कुल 13 गाने थे इस फिल्म में और एक गाना फिल्म के संगीतकार वसंत देसाई ने भी गाया था। फिल्म काफी चली और वसंत देसाई को भी ख्याति प्राप्त हुई। वसंत देसाई का संगीत शास्त्रीय रागों की गरिमा लिए होता था और सहज मधुरता का रसीलापन लिए होता था। दोस्तों, वसंत देसाई मर्मज्ञ संगीतकार थे। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि कमर्शियल फिल्मों में उन्हें सफलता नहीं मिली। वो व्यावहारिक दुनिया से अनभिज्ञ थे, उनकी बारीकियों को वो नहीं समझते थे, इसलिए दुनियावी बातों की तरफ उनका ध्यान कम था। संगीत की बारीकियों की ओर उनका ध्यान मगर बहुत लगा हुआ होता था। उनकी नज़र पैनी थी संगीत की तरफ। हीरे को जैसे जौहरी ही पहचानता है, वरिष्ठ संगीतकार अनिल विश्वास को इस हीरे की पहचान थी। विविध भारती के संगीत सरिता में जब वे पधारे थे तो आपको भी जरूर याद होगा, वसंत देसाई की सांगीतिक बुद्धि की सराहना करते हुए उन्होंने बताया था कि आशीर्वाद फिल्म का ये जो गाना है जो लता जी ने गाया था, कैसे उन्होंने शुद्ध निषाद पर समाप्त किया था। आइए सुनते हैं इसी गाने को।

वसंत देसाई का हर गाना अपनी मिसाल आप है। 1950 में आई फिल्म दहेज का ये गाना सुनिए। जयश्री ने ये गाना गाया था जो कानों में शहद घोलता है।

दोस्तों, वसंत देसाई ने मराठी फिल्मों का भी संगीत निर्देशन किया है। कुल 20 फिल्में उन्होंने की हैं। हर फिल्म का संगीत सुमधुर बन पड़ा है।

उनकी कुछ बहुचर्चित मराठी फिल्में हैं श्यामची आई, मोलकरण, स्वयंवर झाले सीतेचे, लक्ष्मण रेखा, तूच माझी राणी, कांचन गंगा, छोटा जवान, और इसके अलावा संगीत नाटकों को भी उन्होंने संगीत दिया है, आंधळ्यांची शाळा, छाया और देव दीनाघरी धावला।

वसंत देसाई अत्युच्च कोटि के संगीतकार थे। पौराणिक और पारंपरिक फिल्मों का उनका संगीत अमर है।

दोस्तों, किसी संगीत की महफिल में संगीत अपने परमोच्च आनंद लहरों से सबको मुग्ध कर रहा हो और अचानक सितार का तार टूट जाए या बिजली गुल हो जाए, ऐसा ही एक दिन अकस्मात वसंत देसाई के जीवन में आया और उनकी धड़कन का साज थम गया। दिन था 22 दिसंबर सन 1975। वसंत देसाई का संगीत अमर है, जिसके ध्वनि प्रकाश में जीवन के लंबे घने अंधेरे रास्ते भी उजाले से भरे हुए साफ दिखाई देंगे।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने संगीतकार वसंत देसाई पर। शोध स्वर और आलेख अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों बात।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
2: आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। छाया गीत कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा इंतजार।

आइए सुनें छाया गीत। सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। तुम्हारी आंखों में कुछ तो बात है जो दिल के अंदर चली जाती है। तुम्हें देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। अच्छा जी, और तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं हर सांस में महसूस करती हूँ। हर सुबह तुमसे बातें करना चाहती हूँ। तुम्हारे बिना दिन अधूरा सा लगता है। तुम्हारे साथ गुजरा हर पल एक नई कहानी लिखता है। तुम मेरी जिंदगी का वो गीत हो जो कभी खत्म नहीं होता।

तुमसे मिली तो जिंदगी मुझे अच्छी लगी, वरना तो हर सुबह हर शाम अधूरी थी। ये प्यार भी अजीब सा नशा है, हर लम्हा तेरा हो जाता है जब तू मेरी आंखों में आ जाता है। मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं होती, ये रूह की ज़रूरत होती है। सच तेरे नाम से शुरू होती है मेरी सुबह और तेरे ख्याल में रात ढलती है। उसके अलावा मैं क्या मांगूं उस खुदा से, उसके अलावा मैं क्या मांगूं उस खुदा से, और किसी चीज़ का तलबगार वो भी नहीं, मैं भी नहीं।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। इतनी दिलकशी थी कहां जिंदगी में, हमने जब तक आपको चाहा न था। जी चाहता है तू साथ चले तो आहट भी ना आए अपनी, दरमियां हम भी ना हो, यूं तुझे तन्हा चाहें। सुनो ना, खिड़कियां जागती आंखों की खुली रहें, मेरे दिल में महताब उतरता है इसी जीने से। अगर होता है इत्तेफाक तो यूं क्यों नहीं होता, अगर होता है इत्तेफाक तो यूं क्यों नहीं होता कि तुम रास्ता भूलो और मुझ तक चले आओ।

आपको पता है अपने दिल को कैसे हमने शाद किया? दिन में तुम्हारे ख्वाब सजाए, शब भर तुमको याद किया। किताबे जिंदगी का हर पन्ना महकता है, कुछ में आपकी आरजू है, कुछ में आपका ख्याल है। देखने के लिए तो सारा आलम भी कम है, चाहने के लिए एक चेहरा ही बहुत। किसी पाबंदे मोहब्बत से पूछना, वही बतलाएगा एक दीवाने का जंजीर से रिश्ता क्या है।

भीगी जुल्फें, भीगा आंचल, आंखों में नींद हो, चांदनी रात हो, सर्द हवाएं हाथों में हाथ हो, महके हुए दिन रात हो, तुम मेरे साथ हो। प्यार की दस्तक दिल पे सुनाई दे, चांद सी सूरत ख्वाब में दिखाई दे, मेरी पलकों पे तितलियों के पर रखते कोई, अपनी आहट भी देर तक सुनाई दे। काश के तसव्वुर मेरा चुपके से तुझे छुआए, अपनी हर सांस से मुझको तेरी खुशबू आए। घंटियां बजने लगे हिजर के सन्नाटे से, गुनगुनाता हुआ ऐसे में अगर तू आए। आकर मेरे ख्यालों में बाकी जहां बेख्याल कर जाते हो, आकर मेरे ख्यालों में बाकी जहां बेख्याल कर जाते हो, हमें भी सिखा दो हुनर कैसे ये कमाल कर जाते हो।

0: साथियों, आज के छाया गीत का सफर बस यहीं तक। शेफाली कपूर को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: यह है विविध भारती।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरिटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोहराट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण की विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
1: नमस्कार। 10 जून 2026 एक ऐसी तारीख बन गई है जो कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगी और लोकतंत्र जिसकी बात सिर्फ बात नहीं होती बल्कि भारत उस पर गर्वान्वित महसूस करता है उस इतिहास में भी लिखी जाएगी। नरेंद्र मोदी एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निर्वाचित एक प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया है और इसके अलावा एक दिन पहले ही केंद्र सरकार के 12 साल भी कम्प्लीट हुए हैं। तो अब विकसित भारत की बहुत बात होती है लेकिन एक ऐसा मंत्रालय जिसकी बात गांव गांव तक पहुंचती है और सिर्फ बात नहीं क्या वाकई में गांव के लोग उस बात को महसूस भी करते हैं। जी हाँ, हर घर जल और नल ये एक ऐसी योजना रही जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा 12 साल में रही और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी। बहुत बहुत स्वागत है पाटिल जी आपका।
2: नमस्कार।
1: दो कीर्तिमान स्थापित हुए 12 साल सरकार के और दूसरा प्रधानमंत्री ने वो रिकॉर्ड तोड़ा जिसकी चर्चा अब तक सबसे ज्यादा होती थी जवाहरलाल नेहरू की। दोनों को आप किस तरह देखते हैं?
2: देखो, 12 साल कंटिन्यू काम करना, लोगों की जो आस है जो अपेक्षा है वो पूरी करना और बार बार जीतना और ऐसे मुश्किल परिस्थिति में जीतना ये अपने आप में बड़ी बात होती है। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी वो सब लड़ते थे इलेक्शन, उस टाइम कांग्रेस के सामने कोई विरोध पक्ष नहीं था और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके सामने तो बहुत ही पावरफुल लोग, सीनियर लोग, कांग्रेस खुद लड़ती है और उसके अंदर अपने बलबूते पे लड़कर वो आना और 12 साल कंटिन्यू सेवा करना और करते रहना, यही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और उसको हम देखेंगे कि 12 साल में क्या किया उन्होंने। लोगों की सभी अपेक्षा पूर्ण करने में उत्तीर्ण हुए, एक लाइन में अगर कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं क्योंकि काम तो उसके अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत काम उन्होंने किए, देश को सुरक्षित कर दिया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी समाज के लिए कोई न कोई योजना बनाकर उनको लाभान्वित करने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया।
1: पाटिल जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता रहे क्योंकि आपके साथ तो उनका एक जो साथ और अपनापन रहा वो सिर्फ अभी 12 साल का नहीं, वो तो कितने समय पुराना हो गया गुजरात से लेकर दिल्ली तक। आपने क्या देखा कि इतना ज्यादा हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कसीदे इन 12 सालों में भी, जब से सरकार बनी अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी यही बात होती रही और सरकार ने 12 साल कंप्लीट कर लिया?
2: देखिए, हमारे कहते ना अंगूर खट्टे हैं, तो इन्होंने कोशिश तो बहुत कर ली मगर जो उनकी लालसा थी कि सरकार को गिरा देंगे,

0: सरकार बना लेंगे। मुझे लगता है शायद वो लोग जो उनकी इच्छा इस जन्म में पूरी होने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि पूरा देश मोदी साहब के साथ खड़ा है और इसके लिए खड़ा है कि उनकी जो अपेक्षा थी वो पूर्ण करने वाला एक सक्षम व्यक्तित्व उनमें उसमें दिखता है। और ये मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि वो सपने नहीं दिखाते। अगर आप एक लाइन में देखेंगे तो आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने कोई आंदोलन नहीं हुआ कि हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, गटर चाहिए या कोई भी चीज के लिए। उन्होंने डिमांड कोई करे उसके पहले उसकी आवश्यकता को समझ के समय के पहले उसको पूरा कर दिया। ये आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में कभी नहीं किया, इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है।
1: मोदी जी को इतना टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे किसी मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा नहीं होती थी जितना विपक्ष उनकी चर्चा करता था, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सबसे ज्यादा टारगेट उन्हीं को किया जाता है।
0: देखिए, उनको लगता था कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा खानदानी अधिकार है, ऐसा वे समझते थे। आज एक आम आदमी में से एक सामान्य आदमी अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचता है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अभी किसी से मैं बात कर रहा था कि 12 साल तो रिकॉर्ड हुआ, 12 साल बेमिसाल तो रही है। आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
1: तो यही तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ही है जिसने यहाँ तक उनको पहुँचाया है?
0: नहीं, आत्मविश्वास तो उसकी तो प्राथमिकता है, मगर उसके साथ प्लानिंग है। वो जमीन से जुड़े रहते हैं, लोगों की क्या समस्या है उसको ध्यान देते हैं, उसको कैसे उनको मदद की जाए उसके लिए सोचते हैं, उनकी योजना बनाते हैं। टारगेट अगर महिला के लिए तो महिला की योजना बनेगी, किसान के लिए तो किसान के लिए योजना बनेगी। हमारे देश में हम कहते हैं कि ये तो खेती प्रधान देश है, मगर आज तक कभी किसानों के लिए योजना नहीं बनी थी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहली बार बनाई। यानी ऐसे कई आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी योजना बनाकर उन्होंने मदद की है।
1: पाटिल जी, अब हर घर जल और नल, ये योजना, मतलब ये विडंबना ही है इस देश की कि आजादी के बाद इतनी सारी चीजों पर बात होता था लेकिन तब भी महिलाओं को सिर पर घड़ा रखकर लाना पड़ता था। मैंने कई गांव में जाकर देखा उत्तर प्रदेश के कि महिलाएं इतना खुश होती थी। ये जो विजन है, और क्योंकि आपके मंत्रालय से संबंधित है, मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगी कि ये विजन अब तक क्यों नहीं आ पाया किसी के दिमाग में, और अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है?
0: किसी को गरीब लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक टारगेट दिया है। हमारे यहाँ देश में घरों में टॉयलेट नहीं था, महिलाओं को सूर्यास्त के बाद में और सूर्यास्त के पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, अंधेरी रात में उनके ऊपर कई बार असॉल्ट भी हुए। कई लोगों को ये जो टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत कैसे बन सकता है? अगर घरों में टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ विकसित भारत के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 60 करोड़ लोगों ने अपनी आदत बदल दी, 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए जाती थी, उसी तरह यहाँ भी टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी। तो जिस तरह टॉयलेट का काम किया उसी तरह पानी का भी काम किया। हर घर में नल से जल, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। आज तक 70 साल में कांग्रेस के समय में कभी भी किसी के घर में पानी देने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। वो एक मोहल्ले में एक हैंडपंप डाल देते थे तो उनको लगता था हमने पानी की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो हर घर में और अभी हर पर हेड 55 लीटर पानी उसको मिले, अच्छा पानी, क्वालिटी का पानी मिले, पूरी क्वांटिटी में मिले, इसकी व्यवस्था करने के बाद थी। 16 करोड़ घरों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पानी पहुंचा दिया। 3 करोड़ घरों में अभी जो पानी पहुंचाना है उसकी डेट भी तय कर ली कि दिसंबर 28 तक ये भी पूरा काम पूरा करना है। तो इससे हुआ क्या, जो 9 करोड़ महिला पानी लेने के लिए जाती थी, बोझ उठा के आती थी, उसमें मुक्ति मिली। 5.5 करोड़ घंटे उनके रोज पानी लाने जाने में उनके जाते थे, आज वो अपने फैमिली के दे सकते हैं, उसको आर्थिक उपार्जन में उसको खर्च कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात हुई। WHO का रिपोर्ट कहता है कि इसके कारण 3 लाख बच्चों की जान बची है। जो पानी के कारण, जो गंदा पानी आता था उसके कारण जो बीमारी आती थी उसके लिए जो लोग अपना पैसा खर्च करते थे, वो 8.4 लाख करोड़ रुपया वो लोगों का बचा। तो यानी एक योजना उसके पीछे कितने लोगों का फायदा हुआ, महिलाओं को पानी की मुश्किल दूर हो गई, टॉयलेट बनाने से महिलाओं की सुरक्षा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो एक योजना के साथ महिलाओं को, युवाओं को, सबको ध्यान में रखकर ये योजना माननीय मोदी साहब भी बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी वही कर सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो काम मोदी साहब ने किया है।
1: मुझे याद है पाटिल जी, लास्ट टाइम आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने वो जल संचय के बारे में बताया था। आप दिल्ली आए थे और आप बता रहे थे कि पीएम ने किस तरह से कहा कि ये जल संचय वाला जो

0: प्रोजेक्ट है, इसको कैसे हमें पहुंचाना है? मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है।
1: देखिए, जल संचय से जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए और कर्मभूमि से मातृभूमि में जल संचय के लिए सहयोग करना चाहिए। ये दो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को कही थी, एक वर्चुअल मीटिंग में कही थी। हमारा पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था। हमने अचीव किया, 27,50,000 पर हम पहुंच गए। हमने नया टारगेट लिया 31 मई 2026 तक 1 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट लिया और हम 1,55,00,000 तक पहुंच गए। इसमें मनरेगा में से करीब 10 लाख स्ट्रक्चर बने, बाकी सभी जो स्ट्रक्चर बने वो छोटे से लेके बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बने वो लोगों ने अपने पैसों से बनाए। और इसमें छोटे छोटे भी है तो बड़े भी है। एक कच्छ में एक एंकर स्विच वाला जो है, उनका नाम है दामजी भाई एंकर, शायद वो अभी नहीं रहे, उनकी फैमिली है, वो बॉम्बे रहते हैं, मगर वो लोग कच्छ के हैं। कच्छ में एक भूखी नदी है, वो भूखी नदी में पानी नहीं है, उसको सफाई करनी थी, उसको डिसिल्टिंग करना था। उन्होंने 50 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च किए। एक व्यक्ति अपने गांव में नदी के लिए इतना पैसा खर्च सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के आह्वान के बाद ही हो सकता है। एक ऐसा आदमी है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हमारे देश तकलीफ में है, हम एक टाइम का खाना छोड़ दो, लोगों ने खाना छोड़ दिया। मोदी साहब ने कोरोना के समय में कहा कि एक भी आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस देखिए, कितना पॉजिटिव सोच है। और सिर्फ सोच नहीं, उसको अमलवारी भी करवाने की ताकत रखते हैं। तो ये जो उनका काम करने की जो सिस्टम है वो आपको देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उन्होंने कहा था कि रिवर लिंकिंग करना चाहिए, वो तो नहीं कर पाए, मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले नर्मदा से साबरमती और साबरमती से कच्छ तक जितनी नदियां तालाब सरोवर आए वो सबको पानी से भर दिया। और पहला रिवर लिंकिंग था केन बेतवा, दूसरा रहा मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में। 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2030 में वो पूरा हो जाएगा। उन्होंने पीकेसी की एक नया योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में शुरू की, वो भी शायद 1,00,000 करोड़ से बड़ी योजना है। राजस्थान की जो पानी की किल्लत है वो आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी साहब काम कर रहे हैं तो पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। और जो जल संचय की जो विशेषता ये है कि हम डैम बनाते हैं, डैम से पानी कैनाल में ले जाते हैं, तो कैनाल जहां तक पहुंचती है उसके अगल बगल के किसानों को फायदा होता है, मगर जो दूर दरार है, गांव दूर है, खेत दूर है, उसको पानी नहीं मिलता। जल संचय से हर गांव में जो बह के जाने वाला पानी खड्डे में जाता है, खड्डे से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से दरिया में चला जाता है। हमको उनको वहीं रोक देते हैं, खड्डे में ही बोर करके 100 फुट का उसमें पानी उतार देते हैं, खेत में भी 4x6 का खड्डा करके उसमें पत्थर डाल देते हैं। एक बारिश में 4 से 5 लाख लीटर पानी वो खेत में नीचे जमीन उतर जाता है। इसके कारण जो किसानों के कुएं हैं, बोर है, उसमें पानी ऊपर आ गया, जल स्तर बढ़ गया, जल की क्वालिटी सुधर गई। गांव में भी ऐसा हुआ, गांव के भी जो कुएं थे या बोर थे उसमें भी पानी का स्तर बढ़ गया, क्वालिटी सुधर गई। तो ये जल संचय अपने आप में बहुत बड़ा काम, इसके लिए कि हम हर जगह पर डैम बनाकर पानी नहीं ले जाएंगे तो ये जल संचय की वजह से हमको वहां की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी।
0: आपको लगता है ये जो इसी तरह के विषय हैं, क्योंकि पुरुष तो बाहर नौकरी करने चले जाते थे या काम करने के लिए, महिलाओं को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती थी, चाहे वो टॉयलेट वाली बात हो या अगर घर में पानी नहीं आ रहा है, नल नहीं है, यही जो एक विमेन वोट जो बना कि पहले जो महिलाएं बीजेपी के खिलाफ भी वोट करती थी, सारी की सारी महिलाएं अब मोदी मोदी करने लगी हैं। आपको लगता है यही वो वजह है?
1: एक वजह नहीं है, महिलाओं देखती है कि पहला आपको बताऊं, मैं गुजरात में जब आए थे उस टाइम में पावर नहीं आता था, महिलाओं को रसोई जल्दी बनानी पड़ती थी, जल्दी खाना खा के जल्दी बर्तन करके उनको बैठ जाती थी और फिर उसके पास बहुत टाइम था और एंटरटेनमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी साहब ने आकर एक सिंगल फेज अलग से लिया, पूरे गुजरात में सभी घरों में कभी लाइट नहीं गई, तो उनकी व्यवस्था हो गई, तो बहनों को जल्दी रसोई करने की आवश्यकता नहीं, जल्दी खाना खा के फिर फ्री हो जाएगा, तो ऐसा नहीं था, वो देर तक बैठ सकती थी, वो टीवी देख सकती थी, उसको एंटरटेनमेंट के लिए एक साधन बन गया। तो इसके लिए महिलाओं को लगा कि नहीं, हमारे लिए चिंता की है, तो उनके जीवन में एक प्रकाश आ गया, ऐसा उनको लगा। आज देश में भी देखेंगे कि देश में अगर कोई भी पुरुष बाहर जाता है तो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, सबको लगता है कि सुरक्षित आ जाए घर में। ये सुरक्षा अगर किसी ने प्रदान की तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की, आतंकवाद को खत्म कर दिया, नक्सलवाद को खत्म कर दिया, और जिस तरह से आज महिलाओं को उन्होंने प्रमोट किया, हर सेक्टर में प्रमोट किया, तो उसकी वजह से उनके मन में जो इच्छा थी, जो टैलेंटेड थी, मगर उनको मौका नहीं मिलता था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने महिलाओं को भी मौका दिया। सबसे पहले गुजरात में उन्होंने इलेक्शनों में, तो वहां जिला पंचायत, महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत में 50% महिला

0: ओके सीट रिजर्व कर दी। वो पहला इंसिडेंस था। बाद में आप यहाँ देखिए कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के लिए भी 33% महिलाओं की सीट रिजर्व कर दी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। महिलाओं को एक विश्वास आता है कि कोई हमारे लिए काम करता है, कोई हमारी चिंता करती है। आज ये सभी महिलाओं मोदी साहब की चिंता करती है कि उसके विरोधी जो है उनको ठीक रखना, उनको सत्ता से दूर रखना, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
1: आप गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी जी और अब पीएम के तौर पर दोनों देखा आपने, कुछ अंतर आया क्या पहले वाले मोदी जी में और अब वाले मोदी जी में?
0: मैं मानता हूँ कि पहले भी मोदी साहब सामान्य जन के लिए काम करते थे, आज भी वही काम करते हैं। वहाँ उनकी एक मर्यादा थी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री है, इसके लिए उनको एक काम भी उनका बड़ा है, तरीका भी थोड़ा बदल गया है। और मगर आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री के तौर पे भी जो काम करते थे उसको भी उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया और नई सोच के साथ, नई ताकत के साथ उन्होंने यहाँ पर भी कई योजना बनाई। हम कहेंगे कि अवकाश से लेकर पाताल तक हर जगह पे उन्होंने काम किया। हम चंद्र पर पहुंच गए, जो कभी हमारे लिए सपना था तो उन्होंने कर दिया। आपको सुरक्षित करने के लिए जो फ्लाइट आई उसके अंदर भी महिलाओं को उन्होंने उनकी कमान सौंप दी। उसी तरह उन्होंने जमीन के ऊपर भी जो डेवलपमेंट के काम करने थे वो भी उन्होंने किए। सबमरीन भी नई नई बनाई और जल को भी सुरक्षित करने का काम, यानी जल सीमा को भी सुरक्षित करने का काम भी उन्होंने कर दिया। आज भारत की ओर देखने का नजरिया लोगों का बदल गया है। आज भारत के लोग बाहर जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है, पहले तो उनकी कोई दरकार भी नहीं करता था, वो अपमान करते थे। आज वो बात नहीं रही। ये जो जाने वाले लोग थे पहले भी और अभी भी, उनको ये बात समझती वो पूरी वो देखते भी है।
1: गुजरात का कई सारे वहां के किस्से जो हैं मैंने किताबों में पढ़े और कई बार हमने जो मोदी जी के बचपन के दोस्त वगैरह उनके इंटरव्यूज देखे कि मोदी जी एक तो हर किसी को याद रखते हैं नाम से और दूसरा हर बात की बारीकी में, डिटेल में जाते हैं, काम के मामले में भी और वैसे भी। तो जब आप वहां पर थे गुजरात में, कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर उनको कुछ गलत बता दिया हो तो वो एकदम पकड़ लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे तथ्य गलत बोला गया है?
0: वो तो पूरा देश जानता है कि बहुत शार्प है, उनको कोई गलत बता के उन्हें कोई ठग जाए ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती। और उनका जो डिटेलिंग करने का काम है उसके अंदर कोई भी आदमी उनको कोई गलत कुछ बता भी नहीं सकता। और वो जो सुनते सबकी है और करते हैं अपने मन की, क्योंकि उनको अपने आप में भरोसा है, उनका प्लानिंग होता है, बहुत माइक्रो लेवल पे वो प्लानिंग करते हैं और परिणाम लाके देते हैं। गुजरात में पहली बार महानगर पालिका अगर किसी ने जीती थी, अहमदाबाद महानगर पालिका, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जीती थी। तो ये वहीं से उनकी जो शुरुआत हुई थी वहीं से वो जीत के लिए ही उनका जन्म है, जीतते ही जाते हैं, उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा और ना कभी देखेंगे।
1: आपने कोई एक चीज जो उनसे सबसे ज्यादा सीखी हो, जिसको आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट आपने कर रखा हो? बिल्कुल,
0: एक बार 26 जनवरी का दिन था, आवाडांग में उनका कार्यक्रम था और वो जो साफा लगाते हैं तो ये साफा मुझे लेके जाना था और मैं 2 मिनट लेट पहुंचा, सिर्फ 2 मिनट। उन्होंने किसी से बंधवाना शुरू किया, जैसे उन्होंने अभी तो वो रखा ही था, हाथ में ही पकड़ा था और मैं पहुंच गया था। मुझे उन्होंने कुछ बोला नहीं, मुझे ऐसे लगा कि सीआर ये कैसे चलेगा, मैंने कहा सॉरी सर। उन्होंने और कुछ भी नहीं बोला। मुझे आज तक भी वो 2 शब्द उनके, वो मुझे उसके घाव आज भी दिखते हैं। तो ये उनसे ही सीखा है कि समय पे ही काम होना चाहिए, हमें देर करने की कोई आदत ही नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में भी मेरे हमारी मीटिंग जो होती है मैं डॉट टाइम शुरू करता हूँ, समय पर पूरी करना, जो भी काम है उसको हमें आज करना है तो कल तक छोड़ना ही नहीं, आज ही पूरा करना। मेरे पास कोई भी फाइल आती है मैं सेम डे उसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये सब आदत है जो मोदी साहब ने सिखाई है कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और हम सामान्य लोगों को अवेलेबल होने चाहिए। उनसे सीखे हैं, यहाँ कोई भी आके मिल सकता है, हमारे गेट पे किसी को रोकते नहीं है, किसी का नाम तक नहीं पूछते हैं। तो उसको लगता है कि मैं कोई प्रधान के यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता के यहाँ जा रहा हूँ। तो ये सब बातें उनसे सीखी है कि लगाव लोगों से बढ़ना चाहिए और उन्हीं के आधार पर जो टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं, अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी साहब से सीखी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पॉलिटिकल फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी उनसे ही सीखी है, उनका ही अनुकरण करके हम आगे बढ़ते हैं।
1: आपके इस एग्जाम्पल से तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने 2 शब्दों में अपनी बात भी रख दी और आपको आज तक वो बात याद भी है। इसका मतलब तो वो बहुत सरल तरीके से अपनी बात बता देते हैं लेकिन छवि उनकी ऐसी बनाई जाती है कि एकदम बहुत दहशत रहती है उनको देख करके।
0: नहीं नहीं, वो तो देखो अपने काम से मतलब रखते हैं। मैं एक इंसिडेंस आपको और कहना चाहूंगा। 2014 का लोकसभा का इलेक्शन वो लड़े, काउंटिंग में करीब 10-15 दिन का टाइम था। एक बार उन्होंने वहां के सभी सेक्रेटरी और जो गांधीनगर में है सभी आईएएस अधिकारी और सभी एमपी सबको स्पाउस के साथ बुलाया था और वहां उन्होंने उनका कॉन्फिडेंट लेवल आपको उसमें दिखेगा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूं, काउंटिंग के

0: पहले 15 दिन पहले कोई व्यक्ति जो कभी दिल्ली नहीं गया वो कहता है कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ। और मैंने इसके लिए बुलाया कि मेरे बारे में बहुत सी चर्चाएं होती है, बहुत सी अफवाहें चलती है। कोई कहता है कि मोदी जी ने किसी अधिकारी को गेट आउट कह दिया, किसी को फाइल फेंक दी, गुस्सा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आदमी हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है। और मैंने आज तक कभी किसी भी अधिकारी को गेट आउट नहीं कहा, मैंने कोई भी अधिकारी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने कोई भी फाइल कभी अधिकारी को फेंकी नहीं। मुझे अगर गुस्सा आया होगा तो मैंने वो फाइल लेकर साइड में रख दी होगी, इससे ज्यादा मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। आपके मन में होगा, यहाँ सब अधिकारी की पत्नी बैठी है, उनको होगा कि मेरे पति को भी मोदी साहब ने डांटा होगा, मगर वो बता नहीं रहे होंगे घर में। पर मैं आपको कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, उसके पहले मुझे एक क्लियर करना था, इसके लिए बताया। मगर वो क्लियर तो किया उन्होंने, मगर जो आत्मविश्वास प्रकट हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल जो प्रकट हुआ कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये उनका काम करने का तरीका है।
1: ये तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। लेकिन पाटिल जी, इन 12 सालों में आपने, चलिए हर घर नल और पानी वाला तो आप ही का डिपार्टमेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अलावा ऐसा कौन सा माइलस्टोन आपको फैसला लगता है या सरकार की कोई नीति लगती है जो हमेशा मतलब याद रखी जाएगी?
0: वो एक चीज नहीं है, मैं कह रहा हूँ फिर से महिलाओं के लिए हम बात करेंगे तो वो रोटी जो रसोई करती थी तो लकड़े पर करती थी, धूम्रपान से मुक्त कर दिया मोदी साहब ने महिलाओं को। और उसके साथ उसका छोटा बच्चा अगर घर में है तो उसका भी फेफड़ा बचपन से ही वो वीक हो जाता था, तो सिर्फ महिलाओं के लिए बच्चों के लिए भी उसके अंदर काम हो गया, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने देखा होगा आयुष्मान में लोग बीमार पड़ते थे, घर में नहीं बताते थे, उनको लगता था कि बेटे को पता चलेगा, खर्च होगा, बेटे के पास पैसे नहीं है तो कर्ज लेगा, मकान बेचेगा, खेत बेचेगा। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कर्जदार बने, और वो जो भी दर्द है उसको छुपा लेते थे। बहुत तकलीफ होती थी तो बाहर जाके खेत में जाकर रो लेते थे, और घर में नहीं बताते थे, आंसू लेके नहीं आते थे। मोदी साहब ने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ, और उनके लिए 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट है उसका पैसा मोदी साहब ये योजना से कर रहे हैं। ये भी आपको दिखेगा कि ये भी अपने आप में बहुत बड़ी योजना ये भी बनी है। किसानों के लिए कभी कोई योजना नहीं बनी, उनके लिए भी 6,000 रुपया साल में 3 बार डाल देते हैं, बिल्कुल समय पर देते हैं। और युवाओं के लिए भी उन्होंने कितनी कोशिश की, पहले तो नौकरी लगाना है तो आपको किसी की सिफारिश चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन दे देनी पड़ती थी। आप देख रहे हैं कई लोगों के ऊपर उसके केस भी चल रहे हैं। यहाँ पारदर्शिता से जो वो अभी उन्होंने 51,000 बच्चों को अभी रोजगारी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया, एक सेकंड में पूरे देश में 50,000 लोगों का हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। ना उसको कोई सिफारिश करनी पड़ी, ना किसी को कुछ पैसा देना पड़ा, ना जमीन देनी पड़ी। तो उससे युवाओं को भी विश्वास हो गया कि ये आदमी युवाओं के लिए भी कुछ करना चाहता है, और वो युवा कोई निराश ना हो जाए, उसके पहले उसको कोई चांस मिल जाए, तो उसके लिए भी उनकी कोशिश रहती है।
1: ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है हमेशा कि मतलब देश में आर्थिक सुनामी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था डिरेल हो चुकी है, तमाम चीजें ऐसी बातें बताने की कोशिश होती है, उस नैरेटिव को कैसे देखते हो आप?
0: जब पूरे विश्व में सभी जगह युद्ध चल रहा है, एकमात्र हमारा देश है वो भी माननीय मोदी साहब की जो पॉलिटिकल जो सेंस है उनकी जो विदेश नीति है उसके कारण हम बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। पूरी दुनिया में युद्ध है, एक जगह नहीं है, 2 देश के बीच में नहीं है, मगर हम बिल्कुल शांति से रहे, हमें कोई भी युद्ध का डर नहीं लग रहा है, हम न्यूज तक नहीं देखना चाहते कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो ये जो पोजीशन परिस्थिति जो आई है वो तो मोदी साहब की वजह से है। तो ये जो ग्रोथ है ऐसे समय में, कोरोना के समय में, कोरोना के बाद में, युद्ध के समय में, इतना GDP जो आया है वो खुद ही रिकॉर्ड है। मनमोहन जी तो अर्थशास्त्री थे, उस टाइम तो हम 11वें नंबर पे थे, हमारी आर्थिक व्यवस्था 11वें नंबर पे थे, मोदी साहब ने 5वें पर लाई और 3रे पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये भी उनको कहकर लाए हैं, हमने कहा कि हमने कुछ किया और हो गया, ऐसा नहीं है, पहले से उन्हें कह दिया कि मैं ये नंबर पे देश के अर्थतंत्र को लेके आऊंगा। तो ये व्यवस्था करना तो हर क्षेत्र में, डेवलपमेंट हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, देश का हो, चंद्र पे जाना है, अवकाश में जाना है, हमें फाइटर प्लेन लेने हैं, अच्छी सबमरीन लेनी है, वो भी देश में बनाना है, तो सब काम एक ही आदमी इतनी ताकत के साथ कर रहा है। और ये बैठे बैठे बस उनकी एक ही सोच है कि बस हमें प्रधानमंत्री बना दो। क्यों बना दो, उसका कोई वजह नहीं है उनके पास, उनको खानदानी ये सीट उनकी है ऐसा उनको लगता है। ये चाय वाला कैसे आ गया, ये चाय वाला पूरे देश के लोगों की चाहना लेकर आया है, और इसको हटाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है।
1: चलते चलते पाटिल साहब, मैं यही जानना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री को आप सब लोगों ने ग्रीट किया, स्टैंडिंग ओवेशन दी, इतना रिकॉर्ड पीएम ने बनाया, प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन था?
0: मैंने मोदी सर ने सबका आभार व्यक्त किया, सबको धन्यवाद दिया।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीआर पाटिल जी, क्योंकि ये जो बातें आपने बताई इसीलिए बहुत ज्यादा अहम

0: ये बातचीत थी कि मोदी जी के साथ ये अपनापन और जो पल आपने बिताए हैं, बहुत ही कम लीडर्स ऐसे हैं जो उनके साथ इस तरह से बारीकी और करीबी के साथ में रहे, इसलिए ये बातें शायद कोई और नहीं बता पाता। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर। अब सुनिए मोबिक्विक के संस्थापक बिपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार। 26 मई 2014 यही वो तारीख थी जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपने, उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ भारत की सत्ता संभाली थी। तब से लेकर अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में जनता ने दो बार आशीर्वाद मोदी सरकार को दिया है। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। इन 12 साल में हमने कई नीतियां देखी, जमीन पर उतरती हुई नीतियां देखी। सभी के फोकस में, सभी के केंद्र में आम आदमी था और एक ऐसी ही नीति थी डिजिटल इंडिया को लेकर। और जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, नीतियों में क्या कुछ बदलाव संभव है, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं। और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोबिक्विक के फाउंडर और सीईओ विपिन प्रीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है विपिन आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अभी के समय में अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें और 12 वर्षों में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें तो आपने जिस तरीके से आपका सफर रहा है उसमें आप अर्थव्यवस्था का आकलन कैसे करते हैं?
3: पहले तो शिशिर जी धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए। और मोबिक्विक जो मैंने कंपनी स्टार्ट की थी करीब 17 साल पहले, उसमें से 12 साल मोदी सरकार के अंदर ये कंपनी खड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सन 2014 में ही मोबिक्विक को सबसे पहली फंडिंग मिली थी और उसके बाद मोबिक्विक ने करीब 2000 करोड़ रुपए पिछले 12 साल में डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर्स से उठाए और बिजनेस बनाया। तब हमारे पास आई थिंक 30 लाख या 40 लाख यूजर थे। आज की डेट में मोबिक्विक प्लेटफॉर्म 18 करोड़ यूजर यूज करते हैं पूरे भारत में। तो इन नंबरों से ही आपको समझ आ जाएगा, इन आंकड़ों से, कि हमारे देश में जो डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इकोनॉमी है वो किस हद तक उसकी ग्रोथ हुई है। मुझे याद है 12 साल 15 साल पहले जब आप मोबाइल फोन पे कॉल करते थे तो सोचना पड़ता था कि कितने की कॉल पड़ेगी, मैसेज करना है तो कितना पैसा लगेगा। आज के समय में आप नहीं सोचते। आज के समय में अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप बैंक नहीं भागते, आप फटाक से अपना फोन निकालते हैं और यूपीआई से डिजिटल पेमेंट करते हैं। करीब करीब 4 में से एक भारतीय या 3 में से एक भारतीय ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स के साथ जुड़ चुका है, जिसमें मोबिक्विक ने एक बहुत बड़ा सफर और बहुत बड़ा योगदान दिया है। बट इन सब के पीछे जो नीतियां हैं जिनसे ये पॉसिबल हुआ है उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पहले डिजिटल आइडेंटिटी नहीं होती थी, हम राशन कार्ड लेके घूमते थे। अब आधार जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, पैन जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, मोबाइल फोन के रेट सस्ते हुए हैं, फिर जो यूपीआई का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो उससे मोबिक्विक की बिजनेस को बनाने में बहुत बहुत बड़ा हाथ है। उसके बिना मुझे लगता नहीं है ये संभव भी था।
2: तो मतलब 17 साल के आपके सफर में, 12 साल मोदी सरकार के, और इन 12 साल में जो डिजिटल इंडिया का सफर रहा उसमें काफी हद तक आपके अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली। और आप ही के नहीं, ऐसे कई ऐसे पेमेंट सिस्टम, पेमेंट एग्रीगेटर की हम लोग बात करें वो सिस्टम में आए, उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। अगर मैं तीन प्रमुख नीतियों की बात करूं 2014 से लेकर के 2026 के बीच में, वैसे कौन सी तीन बड़ी नीतियां थी जिन्होंने आपके कारोबार को, कहने का मतलब कि डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद की?
3: तो इनमें काफी नीतियां थी, बट सबसे पहला मैं ये मानूंगा कि कोई भी सरकार जब किसी बिजनेस के साथ काम करती है तो हम जब बिजनेस सरकार से बात करते हैं तो उनकी नीतियों को और उनकी माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो 12 साल पहले ही हमें समझ आ गया था कि ये सरकार डिजिटल इंडिया की एक पॉलिसी लेके आएगी और उसको हर एक लेवल पे इम्प्लीमेंट करेगी। एंड आई थिंक वो जो डिजिटल इंडिया की जो एक मुहिम बनी जिसके अंतर्गत ये सब हुआ कि आधार, पैन, जनधन अकाउंट्स खुले इतने सारे, अभी हर पर्सन के पास, हर इंसान के पास अकाउंट है, तब नहीं थे। तो ये जो नीतियां थी डिजिटल इंडिया के अंडर, जो एक डिजिटल

0: इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया इंडिया में, डिजिटल डीपीआई कहते हैं इसे, इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब तक एक इंसान अपनी डिजिटल में पहचान नहीं बना सकता, तब तक वो डिजिटल पेमेंट भी नहीं कर सकता, और अब डिजिटल लोन भी नहीं ले सकता, डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता। इन सबको जो साथ में जोड़ा गया है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जो कि इवन बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में भी आज तक अचीव नहीं हुए।
1: एक जो बड़ी पहल जिसको हम कहें जैम ट्रिनिटी की, हम लोग बात करें, आपने अभी जनधन की बात की थी, आपने आधार की बात की, आपने मोबाइल का बात किया, और 2015 से हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी किस तरीके से समाज के आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक जो भी सरकार की योजना है उसका फायदा पहुंचाने में मदद की। इस जैम ट्रिनिटी को आप कैसे देखते, क्योंकि एक समय जैसा आपने खुद कहा कि एक मोबाइल फोन को लेकर के हम एक बार सोचते जरूर थे, और हमें वो भी दौर याद है जो आज से अगर मैं 20-25 साल पहले जाऊं, जब 16 रुपए का एक कॉल होता था तो लोग कहते थे मिस कॉल मार देना। वो मिस कॉल मार देना आज भी हमारे मोबाइल कल्चर का एक पार्ट है। ये अलग बात है कि अब हम उस मोबाइल पे 16 रुपए की चिंता नहीं करते, बल्कि मिस कॉल मार देना एक बात कहते हैं। ये मिस कॉल मार देने से जनधन, आधार, मोबाइल, ये ट्रिनिटी को आप किस तरीके से देखते हैं, समाज के आखिरी पायदान पर व्यक्ति जो है उस तक सामाजिक योजनाओं का फायदा पहुंचाने।
0: इसमें सबसे पहले जो मोबाइल की मैंने बात की कि जब इंडिया में 4G आया या 5G आया और नए ऑपरेटर्स आए जैसे जियो आया या एयरटेल ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इसके ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी का पुश था सरकार की तरफ से कि आपको, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो सबसे पहले हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और उसके अंदर डेटा और कॉलिंग ऑलमोस्ट फ्री होनी चाहिए, और वो हुआ, आप हमने पिछले 10 सालों में देखा है। तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। इंडिया आज की डेट में दुनिया के आई थिंक नंबर 1 या नंबर 2 डेटा कंज्यूमिंग कंट्रीज में है। हम डेटा यूज करने से पहले सोचते भी नहीं, जबकि यही 10 साल पहले कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले या कोई वीडियो देखने से पहले आप सोचते थे कि इस पे कितना GB डेटा, MB डेटा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बिकॉज इस चीज को हर दर्जे के लोगों तक पहुंचाना, वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा है आधार। तो आधार के ऊपर तो ऐसा है कि डिजिटल आइडेंटिटी जब तक नहीं होगी तब तक आपका अकाउंट भी नहीं खुलेगा, तो ये उसको पूरा डिजिटाइज करना और उसके प्रोसेसेस को इस तरह से स्ट्रीमलाइन करना कि कोई भी पूरे देश में, उस दिन मुझे अपने आधार में कुछ चेंज कराना था, मुझे 5 मिनट लगे। मैं एक नियर बाय एक बैंक में एनरोलमेंट सेंटर में गया और मैंने वहां पे अपना ऑथेंटिकेशन किया और मुझे कुछ एड्रेस चेंज कराना था, वो इमीडिएटली वहां पे हो गया। इस तरह की सुविधा हमारे देश में नेशनल लेवल आज तक कभी नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिससे आप ये देख सकते हो कि ये आइडेंटिटी है इस पर्सन की और इस आइडेंटिटी के ऊपर आप इसका अकाउंट खोल सकते हो। हमारा देश अभी भी गांव में बसा है, हालांकि शहरों ने काफी तरक्की की है, बट करीब 30-35% आज भी गांव में है और सेमी अर्बन है। हर इंसान बैंक में जाके कंफर्टेबल नहीं रहता था, और बैंक भी जो होते थे, जो इंस्टीट्यूशन होते थे, वो हर एक का अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर किसी की तनख्वाह कम है या उसके अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं तो उसका अकाउंट खोलना मतलब आपको एक लॉस उठाना है। तो उसके ऊपर जो जनधन अकाउंट्स की पॉलिसी बनी, जिसके ऊपर हमारे बैंकों ने काम किया और सबके अकाउंट खोले, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज की डेट में मेरा ये मानना है कि 90% लोगों के पास बैंक अकाउंट है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में आप छोटा बच्चा देखो, आप एक बूढ़ा देखो, कोई रिटायर्ड पर्सन देखो, आप गांव में चले जाओ, आप किसी को भी डिजिटल पेमेंट इसीलिए कर पाते हो क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट।
1: तो एक डिजिटल सिस्टम का एक ये भी फायदा हमें इस स्वरूप में देखें कि जब पहले कहा जाता था कि केंद्र से 1 रुपया चलता था और 15 पैसे लोगों तक पहुंचते थे, आज हम बात करते हैं कि लाभार्थी का जो भी बेनिफिशियरी है उसकी पहचान साबित हो जाती है डिजिटल माध्यम से, और डिजिटल माध्यम से ही लेन देन हो पाता है। ये जो हमारे पास रिसोर्सेस का जो एक बेहतर इस्तेमाल है, ये डिजिटल माध्यम से और भी बेहतर तरीके से हो पाया, इसका फायदा आप किस तरीके से देते हैं? गवर्नमेंट की बजटिंग की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, फिस्कल प्लानिंग की बात करें, उसमें उसका योगदान किस तरीके से?
0: देखिए, डिजिटल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिजिटल बिल्कुल साफ होता है और डिजिटल में पेपर का यूज मिनिमम होता है, और इसीलिए

0: डिजिटल में लीकेज बहुत कम होता है, वरना हमारे देश में जहाँ पे इतने गरीब लोग हैं, सरकार हमेशा से उन पे पैसा खर्च करना चाहती थी और खर्चती है भी, और 12 साल पहले भी खर्चने की कोशिश करती थी, बट वो उन तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो इतने स्टेप से जाता था, इतनी लेयर से जाता था कि वो, जैसा कि आप बता रहे हैं, 1 रुपए की जगह 15 पैसे। बट अब जब सरकार ने डीबीटी बनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट सबके पास है, तो आपको किसी को गैस की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको बिजली की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको खाने की सब्सिडी देनी है, किसी भी तरह की सब्सिडी देनी है, आपके पास उस इंसान की पूरे डिटेल्स हैं, उनके बैंक अकाउंट हैं, उनकी आइडेंटिटी है, आप डायरेक्टली उनके अकाउंट्स पे एक क्लिक करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हो।
1: विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल रिवोल्यूशन की हम लोग बात करें, उसमें बहुत सारे हो रहे बदलाव पे आपने चर्चा की, आपका आभार, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोबिक्विक के संस्थापक विपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: तोपर्यंत नमस्कार, जय हिंद।
4: FM 100.5 MHz वर आणि आकाशवाणीच्या धुळे केंद्रावरून बोलत आहोत। श्रोते हो, सायंकाळचे